0: उद्घाटन करेंगे। ये आयोजन 10 तारीख तक चलेगा। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही ये सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराएगा। आईएमसी 2026 का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। ये डिजिटल नवाचार अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी आधारित विकास में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसके लिए सभी का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को गुजरात के वडनगर से शुरू हुई बाइक सेवा यात्रा भी कल काशी में संपन्न हो गई है। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिन का शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने तथा वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों पर रोक लगाने के उपायों का आह्वान किया गया है। 15 भागीदार देशों द्वारा हस्ताक्षरित ये संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय USTR ने कल रात जारी किया। बयान में देशों ने बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों को समाप्त करने सहित संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन को खत्म करने के उपाय करने का आह्वान किया। आज वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है इंडियन एयरफोर्स इनफेलेबल इम्प्रेटेबल एंड प्रिसाइज, यानी अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार है। चाइना ओपन टेनिस प्रतियोगिता में आज महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। कैरोलिना मुचावो का सामना निकोला बार्तुनकोवा से होगा, वहीं मीरा एंड्रीवा का मुकाबला एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा से होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे, 75 वर्ष की आयु में आज गोवा में निधन। केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज बारिश की संभावना। और मानुष शाह और दिया चिताली की भारतीय जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया

मोबाइल कांग्रेस का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। कल शुरू हुआ ये आयोजन 10 अक्टूबर तक चलेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष का आयोजन 9

0: पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यक्रम में इस वर्ष 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। साथ ही 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप और 900 विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। हमारे संवाददाता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में GST से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी।
2: इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य कर अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार GST व्यवस्था में सुधार के अगले चरण के लिए एक 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखेगी। इन प्रस्तावों में प्रशासनिक अड़चनों को स्वचालित और आसान बनाना शामिल है, जिससे खासकर छोटे कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ कम हो सके। इस योजना के तहत प्रक्रिया और संरचनात्मक सुधार, जीवन और कारोबार को आसान बनाना तथा सेवाओं के निर्यात और ई कॉमर्स से जुड़े बदलाव शामिल हैं। प्रस्तावित प्रमुख बदलावों में खरीदार और विक्रेताओं के बीच इनवॉइस का स्वतः मिलान, कागजी कार्रवाई कम करना और छोटे कारोबारियों के लिए कई राज्यों में पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त करना शामिल है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा जारी इस साझा बयान का मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजारी नीतियों पर रोक लगाना है। ये कदम हाल ही में अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के मिलवाकी शहर में हुई G20 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक के बाद उठाया गया है। बयान में कहा गया है कि दुनिया के कई देश अपने स्थानीय उद्योगों, श्रमिकों और अर्थव्यवस्थाओं को ऐसी व्यापारिक विकृतियों से बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं। सभी देशों ने जोर दिया है कि आपसी सहयोग, सूचना के आदान प्रदान और मिलकर की गई कार्रवाई से इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 15 भागीदारों में भारत और अमेरिका के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, पोलैंड, तुर्की और ब्रिटेन शामिल है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: जालिम लोशन
5: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे किए हैं। उनकी ये यात्रा सेवा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता की मिसाल रही है। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको ऐसी ही एक पहल के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसमें सेवा और सुशासन की ये सोच धरातल पर दिखाई देती है। ये पहल है केरलम में शुरू की गई कोच्चि वाटर मेट्रो सेवा।
2: कोच्चि के जलमार्ग हमेशा से शहर की पहचान रहे हैं। आज वही जलमार्ग कोच्चि वाटर मेट्रो के जरिए यात्रियों की एक नई पीढ़ी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन किया और अगले ही दिन वाटर मेट्रो ने यात्रियों के लिए सेवा शुरू कर दी। तब से ये शहरी सार्वजनिक परिवहन में एक नई पहल के तौर पर उभरी है जो कोच्चि के द्वीपों को मुख्य भूमि से जोड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वाटर मेट्रो से कोच्चि में ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी।
3: वाटर मेट्रो से कोच्चि के इर्द गिर्द के अनेक द्वीपों में रहने वाले साथियों को सस्ता और आधुनिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। ये जेटी, बस टर्मिनल और मेट्रो नेटवर्क के बीच इंटर मॉडल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगी। इससे कोच्चि की ट्रैफिक समस्याएं भी कम होगी और बैक वाटर टूरिज्म को भी नया आकर्षण मिलेगा।
2: कोच्चि के लेखक टीएन वेणुगोपाल ने बताया कि वाटर मेट्रो ने शहर में जल परिवहन को बदल दिया है।
4: वाटर मेट्रो ने कोच्चि में जल परिवहन की व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया।

0: है। ये अलग अलग द्वीपों और मुख्य भूमि के बीच पहुंच प्रदान करती है। परिवहन के किफायती साधन के तौर पर वाटर मेट्रो धीरे धीरे आम आदमी के लिए एक लग्जरी सुविधा के रूप में उभर रही है। इसने पर्यटन क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि अब देश विदेश के पर्यटक कोची के बैक वाटर्स में वाटर मेट्रो की यात्रा को अपनी यात्रा की योजना का अहम हिस्सा मानते हैं, जिससे सड़कों पर यातायात की समस्या काफी हद तक कम करने में सहायता मिलेगी।
1: कोची भारत का पहला शहर है जहां वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ये वाटर मेट्रो 15 रूटों पर चलाई जा रही है। वाटर मेट्रो एयर कंडीशनड और बैटरी से चलने वाली नाव है, जिनमें चार्जिंग की खास सुविधाएं और यात्रियों के लिए आधुनिक टर्मिनल बने हैं। यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस साल 2 अक्टूबर तक वाटर मेट्रो में 77 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। 2 अक्टूबर को ही 11,670 यात्रियों ने इस सेवा का लाभ उठाया। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात आबिदान में कोटे डी आइवर के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तेने बिरहामियामा उतारा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी विश्वास, क्षमता निर्माण और साझा हितों पर आधारित बढ़ती रक्षा साझेदारी पर चर्चा की। उन्होंने प्रशिक्षण और संस्थागत स्तर पर आदान प्रदान बढ़ाने सहित रक्षा और आतंकवाद निरोध के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया। आबिदान में हुई ये बैठकें डॉक्टर जयशंकर की घाना, कोटे डी आइवर और इथियोपिया की 5 दिन की आधिकारिक यात्रा का एक हिस्सा है। इस यात्रा का उद्देश्य इन तीनों अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन के कीव और करीब 12 अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए 70 मिसाइलें और दर्जनों ड्रोन दागे। यूक्रेन पर किए गए हमले में कल 25 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग घायल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन की सेना ने 44 मिसाइलों को रोक दिया और 117 ड्रोन को निष्क्रिय किया, लेकिन वह पूरे हमले को रोकने में सफल नहीं रही। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए इसे हिंसा के जानबूझकर किए गए प्रदर्शन का रूप बताया। ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हूती ने सऊदी अरब के 2 हवाई अड्डों पर हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। इस बीच हूती अधिकारियों ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने यमन के दक्षिण पश्चिमी तट के प्रमुख इलाकों धुबाब अल जदीद और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य के कुछ हिस्सों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। हालांकि यमन सरकार के एक अधिकारी ने इन दावों को खारिज किया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह गोवा स्थित उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से 75 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। एक श्रद्धांजलि।
3: मैं इंडस्ट्री का हूँ नहीं, मैं यहाँ आता हूँ, काम करता हूँ, वापस भाग जाता हूँ। मैं गांव खेड़े का हूँ और वहीं का रहूंगा और वहीं अच्छा लगता है। जरूरतें सीमित होना तो बहुत आसान हो जाता है, एसी है नहीं, बड़ा बड़ा मजा आता है। सिर्फ अपने यहाँ शहर में जैसे दीवारें होती है ना घर में, हमारे यहाँ पहाड़ है, इस तरफ पहाड़ी बीच में हम रहते हैं।
4: अपनी काबिलियत और दमदार अभिनय से सबके दिलों पर राज करने वाले नाना पाटेकर आज हमारे बीच नहीं हैं। सबकी आंखें नम है, फिल्म उद्योग से लेकर उनके फैंस के बीच शोक की लहर है। अभिनेता नाना पाटेकर ने 1978 में आई फिल्म गमन से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। नाना ने करीबन 8 वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष किया। फिल्म परिंदा में अन्ना की भूमिका को लोगों ने काफी सराहा।
5: न भाई न बहन न बीवी न बेटा,
6: कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। अब्दुल
4: फिर आई 1994 में क्रांतिवीर, जहां उनके दमदार अभिनय को नई पहचान मिली। इसके बाद अग्नि साक्षी, तिरंगा, डॉक्टर प्रकाश, बाबा आमटे द रियल हीरो, नट सम्राट और वेलकम जैसी फिल्मों ने उनकी विरासत को और मजबूत किया। फिल्म अग्नि साक्षी में उनके नेगेटिव किरदार को खूब सराहा गया।
7: क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो, किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर, और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें?
4: अभिनेता नाना पाटेकर फिल्मों में अभिनय से 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं।
6: कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को, किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी।
4: इसी के साथ उन्हें 3 बार अपनी एक्टिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं।

0: नाना पाटेकर ने हिंदी फिल्मों के अलावा मराठी सिनेमा में भी अपना लोहा मनवाया। और अब मौसम का समाचार। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। साथ ही आज बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। खेलों में पेचिंग में मनुष शाह और दिया चिताली ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए WTT चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मनुष और दिया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय मिक्स डबल्स जोड़ी बन गई हैं। आज भारतीय वायुसेना दिवस है और इस वर्ष का विषय है अचूक, अभेद्य और सटीक। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 साल पूरे होने का समाचार कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री का संकल्प प्रकाशित किया है, भारत के विकसित होने तक ना थकूंगा ना रुकूंगा। दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रधानमंत्री मोदी की वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात का भी चित्र प्रकाशित किया है। RBI द्वारा त्योहारों से पहले रेपो दर बढ़ाने का समाचार भी कई अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, रेपो दर में 0.25% की वृद्धि, कर्ज की किश्त बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने आज भारतीय वायुसेना दिवस पर खबर दी है, जहां हौसलों की उड़ान वहीं भारतीय वायुसेना, 94 साल में बदली वायुसेना की रणनीति। दैनिक जागरण लिखता है, छठी कक्षा में देखा सपना और ऑपरेशन सिंदूर से फलक पर छा गई व्योमिका। नाम के अनुरूप आकाश में उड़ान भरने वाली, देश का गौरव है लखनऊ की बेटी, बनी फौजियों के गांव की बहू। ठंडे इलाके के बजाय गर्म क्षेत्र में आ रहे जीव जंतु, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने किया शोध, हिंदुस्तान की खबर है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे, 75 वर्ष की आयु में आज गोवा में निधन। केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज बारिश की संभावना। और मानुष शाह और दिया चिताली की भारतीय जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इनॉग्रेट 10th इंडिया मोबाइल कांग्रेस एट यशोभूमि इन न्यू दिल्ली दिस मॉर्निंग। 57 GST काउंसिल मीटिंग टू बी हेल्ड एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली टुडे। Veteran actor Nana Patekar passes away in Goa. India joins US and 13 other economies in signing joint ministerial statement to address global excess capacity and production in key manufacturing sectors. IMD forecasts heavy rain in Kerala, Tamil Nadu, Puducherry, Uttarakhand, West Bengal and Sikkim today. And in table tennis, Manush Shah and Dia Chitali create history, become first Indian mixed doubles pair to reach Grand Smash final, semi-final, I beg your pardon, at China Smash in Beijing. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the 10th edition of India Mobile Congress IMC at Yashobhumi in New Delhi today. The event will showcase India's remarkable progress in telecommunications, digital connectivity and technological innovation while providing a global platform for collaboration, investment and knowledge exchange. The theme of IMC 2026 is Scale Without Boundaries, reflecting India's growing capabilities in digital innovation, next generation connectivity and technology-led growth. The four-day event, which began yesterday, is being jointly organized by the Department of Telecommunications and the Cellular Operators Association of India. More from our correspondent. India Mobile

0: widespread recognition for films such as Parinda, Kranti Veer, Ab Tak Chhappan and Welcome.
1: कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को, किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है।
2: रह

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार 107.1 एफएम रेनबो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से. मैं हूं ममता सहगल आपके साथ लेकर कार्यक्रम मस्त मुंबई. कार्यक्रम की शुरुआत आज हम करेंगे एक श्रद्धांजलि के साथ और वो श्रद्धांजलि है स्वर्गीय नाना पाटेकर जी को जो आज हमारे बीच नहीं है, जो आज इस दुनिया को नमस्कार करके हमेशा हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चले गए. लेकिन उनकी अभिनय की यादें, उन्होंने जिस तरह से हमारा मनोरंजन किया था, उन्होंने कला के क्षेत्र में जो अपना योगदान दिया है उसके लिए हम हमेशा हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे.

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: अपनी पसंद की कोई भी कार ले, कॉस्मोस कार लोन है ना?
2: कार लोन पर 3 करोड़ रुपए तक उपलब्ध, ब्याज दर 8% और अवधि 7 साल तक, शर्तें लागू।
1: सुहाना होगा सफर कॉस्मोस कार लोन के साथ।
2: आज ही नजदीकी ब्रांच में संपर्क करें। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करे समृद्ध।
0: आकाशवाणी FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.

वेलकम बैक 107.2 एफएम रेनबो। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, मैं हूं ममता सहगल आपके साथ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। 8 अक्टूबर, आज का ये दिन जो है भारतीय वायुसेना के लिए बहुत खास महत्व रखता है। वर्ष 1932 में इसी दिन भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी और तब से लेकर आज तक भारतीय वायुसेना ने कई युद्धों और अभियानों में अपनी क्षमता साबित की है और बदलते दौर के साथ खुद को आधुनिक भी बनाया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आज भारतीय वायुसेना के सामने केवल पारंपरिक हवाई युद्ध की चुनौती नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष, मानव रहित प्रणालियां, साइबर क्षेत्र और तेजी से बदलती हुई तकनीक से जुड़ी हुई कई चुनौतियां भी हैं। ऐसे समय में 94वां वायुसेना दिवस देश की हवाई शक्ति और भविष्य की तैयारियों को रेखांकित करने वाला महत्वपूर्ण अवसर होगा। और आज वायुसेना से ही जुड़ी कुछ खास बातें, वायुसेना ने किन किन युद्धों में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, थोड़ी सी उन पर नज़र डालेंगे और बात करेंगे वायुसेना की, क्योंकि आज है भारतीय वायुसेना दिवस। तो चलिए सुनते हैं कुछ खूबसूरत से गीतों के उस पार, बातें बेशुमार, बने रहिए हमारे साथ।

0: Akashvani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
2: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ
0: Akashvani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.

जी हाँ, यही दुआ करते हैं कि सब खैरियत से रहें, सब सुख से रहें, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती ही जाएं और इतनी आएं कि वो संभाले ना संभले और वो औरों में भी खुशियाँ बांटते जाएं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 107.1 FM रेनबो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं प्रसार भारती की ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर बिल्कुल लाइव। हमारे साथ बने रहने के लिए सुबह से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम श्रोता जो नाना पाटेकर साहब को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनका भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे भारतीय वायुसेना के बारे में, तो वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल MP सिंह बतौर एयरफोर्स चीफ इस बार जो है समारोह में अंतिम बार उपस्थित रहेंगे, क्योंकि वो इसी महीने से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आज वायुसेना दिवस के उपलक्ष्य में एक खास कार्यक्रम बहुत जगह आयोजित किए गए हैं, और ऐसे में केंद्र सरकार ने जो है वो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायुसेना का अगला प्रमुख नियुक्त भी किया है। इस वक्त वो वायुसेना के उप प्रमुख हैं। भारतीय वायुसेना आज के दिन अपना 94वां वायुसेना दिवस मनाने जा रही है, और इस अवसर पर गाजियाबाद स्थित हिंडन वायुसेना स्टेशन में एक बहुत भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह में वायुसेना के कई वरिष्ठ अधिकारी, वायु योद्धा और अन्य कर्मी भी शामिल होंगे। जैसा कि मैंने बताया कि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह जो हैं वो वायुसेना दिवस समारोह के दौरान उपस्थित रहेंगे और यहाँ वायुसेना के जवानों द्वारा की जाने वाली भव्य परेड की समीक्षा करेंगे। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने अपनी स्थापना जो है 1932 में की, और उसके बाद कई बड़े युद्धों और सैन्य ऑपरेशंस में अपना अदम्य साहस और अद्वितीय पराक्रम दिखाया है। आसमान की ऊंचाइयों में भारत माता की रक्षा करते हुए वायुसेना के जाबाजों ने इतिहास के पन्ने पर शौर्य की कई अमर गाथाएं लिखी हैं, और उन्हीं के कुछ युद्धों और प्रमुख ऑपरेशंस की जानकारी हल्की फुल्की मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यहीं। तो बस बने रहिए हमारे साथ यहीं। फिलहाल वक्त एक खूबसूरत से गीत का, गीत के उस पार बातें बेशुमार, बने रहिए हमारे साथ।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: सब चाहते हैं अपना एक मनपसंद घर और सब चाहते हैं एक किफायती ब्याज दर.
2: कॉस्मोस होम लोन ब्याज दर 7.80% से शुरू.
1: 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध. कम से कम प्रोसेसिंग फीस 20 साल तक का अवधि.
2: शर्तें लागू. टोल फ्री नंबर 1800-233-0234.
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक. जीवन बनाए समृद्ध.
3: आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से मैं हूं ममता सहगल आपके साथ लेकर कार्यक्रम मस्त मुंबई. और आपको ये बताती हूं कि वायुसेना ने मुख्य रूप से बहुत सारे युद्धों में और प्रमुख ऑपरेशंस में अपनी वीरता का लोहा मनवाया है, जिनमें शामिल है द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 तक चला था. आजादी से पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना तब

रॉयल इंडियन फोर्स कहा जाता था, इसने बर्मा यानी म्यांमार के मोर्चे पर जापानी सेना के खिलाफ असाधारण कौशल दिखाया था और इसके बाद ही वायुसेना को वैश्विक स्तर पर यानी कि वर्ल्ड लेवल पर एक पेशेवर और लड़ाकू बल के रूप में पहचान मिली थी। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे युद्ध हैं, ऐसे ऑपरेशंस हैं जिनमें वायुसेना ने कमाल का साहस दिखाया था, जिनके बारे में कई सारी मूवीज आ चुकी हैं जो हम देख चुके हैं, कई सारी बातें की जा चुकी हैं और यही नहीं, हमने प्रत्यक्ष भी कई चीज़ों को नोटिस किया है।

0: Swanee FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प.
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने शर्तें लागू.
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ.
0: आकाशवाणी FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
3: वेलकम बैक. 107.1 FM Rainbow आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की मुंबई केंद्र से. मैं हूं ममता सहगल आपके साथ लेकर कार्यक्रम मस्त मुंबई, जहां पर आज मैं आपको भारतीय वायुसेना दिवस के बारे में बताते हुए ये बता रही हूं कि वायुसेना ने कब कब कौन कौन सी ऑपरेशंस या फिर युद्धों में अहम भूमिका निभाई थी. तो 1947 से 1948 के बीच भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था. आज़ादी के तुरंत बाद जब पाकिस्तान समर्थित कबाइलियों ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया था, तब भारतीय वायुसेना के डकोटा विमानों ने बेहद कठिन परिस्थितियों में भारतीय सैनिकों और हथियारों को श्रीनगर एयरफील्ड तक पहुंचाया था. यदि वायुसेना समय पर वहां रसद और सेना ना पहुंचाती तो शायद श्रीनगर का इतिहास कुछ और होता. तो ऐसे ही बहुत सारे युद्धों का इतिहास बहुत कुछ और होता अगर वायुसेना ना होती तो.

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़, म्यूजिकली योर्स।
2: बिल्कुल म्यूजिकली योर्स है, कोशिश यही रहती है कि कुछ ऐसे गाने प्ले करें जो आपके दिल को छू जाएं और साथ ही साथ हमारे दिल की बात भी आपसे कह जाएं। वैसे फिलहाल हम आपको बता रहे हैं वायुसेना के बारे में और उन ऑपरेशंस के बारे में जिसमें वायुसेना ने हिस्सा लेके इतिहास ही बदल दिया था। तो ऐसा ही एक ऑपरेशन था ऑपरेशन विजय, जो 1961 में यानी 1961 में हुआ था, गोवा मुक्ति संग्राम। गोवा, दमन और दीव को 451 साल के पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के लिए भारतीय वायुसेना ने थल सेना और नौसेना के साथ मिलकर ऑपरेशन विजय चलाया। वायुसेना ने पुर्तगाली ठिकानों पर सटीक बमबारी कर उन्हें आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया और इस तरीके से एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई ऑपरेशन विजय में।

0: Swanee FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
2: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ
0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
3: वेलकम बैक 107.1 एफएम रेनबो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से मैं हूं ममता सहगल आपके साथ लेकर कार्यक्रम मस्त मुंबई जो अब अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है क्योंकि ठीक 10 बजे होंगे समाचार हमारे मुंबई केंद्र से हिंदी में और समाचारों के उस पार आप सुन सकेंगे कार्यक्रम नमस्ते भारत जहां हम बहुत ही खास शख्स के जिंदगी का सफर आपके लिए लेकर आए हैं जिंदगी के सफर के साथ साथ कुछ और खास बातें भी हम आपके लिए लेकर आए हैं उनसे जुड़ी हुई तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन है वो शख्स तो बने रहिए हमारे साथ यहीं इसी फ्रीक्वेंसी पर

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, 107.1 एफएम रेनबो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। सुबह के ठीक 10 बज चुके हैं, आइए नजर डालते हैं इस वक्त की समाचारों की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल रात आबिजान में कोटे की आइवर के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तेने बिराहिमा ओ अतारा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी विश्वास, क्षमता निर्माण और साझा हितों पर आधारित बढ़ती रक्षा साझेदारी पर चर्चा की। समाचारों में आगे है, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा स्थित उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नाना पाटेकर अपने घर पर बेहोश पाए गए, जिसके बाद उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने करीब 45 मिनट तक उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। समाचारों के अंत में, ICC ने ताज़ा रैंकिंग जारी कर दी है। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर करियर की सर्वश्रेष्ठ 7वीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं, जबकि एक दिवसीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, आप बने रहिए आकाशवाणी FM रेनबो की मुंबई प्रसारण सेवा के साथ।
0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।

वेलकम बैक 107.1 एफएम रेनबो, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। मैं हूं ममता सहगल आपके साथ, और साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन एयर पर, बिल्कुल लाइव हमारे मुंबई स्टूडियो से। आज का ये जो सफर है, ये उस लेखक के नाम है जिसने कहानियां सिर्फ लिखी ही नहीं बल्कि हमारे समाज, हमारे रिश्तों और हमारी जिंदगी की सच्चाइयों को कागज पर उतार दिया। मुंशी प्रेमचंद एक ऐसा नाम जिसे पढ़ते हुए लगता है जैसे कहानी किसी

और की नहीं, हमारे ही आसपास की है। कभी हीरो कभी होरी के रूप में किसान का संघर्ष हमारे सामने आता है, कभी ईदगाह का हामिद अपने मासूम दिल से हमें छू जाता है, तो कभी बड़े भाई साहब हमें रिश्तों की एक प्यारी सी तस्वीर दिखा जाते हैं। प्रेमचंद की कहानियों की यही तो खास बात थी, वक्त बदल गया, जमाना बदल गया, लेकिन उनकी कहानियों के किरदार और जज्बात आज भी हमारे बीच कहीं ना कहीं मौजूद हैं। तो आइए आज के इस खास कार्यक्रम में याद करते हैं हिंदी उर्दू साहित्य के उस महान कथाकार को, जिनकी कलम ने आम आदमी की आवाज को हमेशा एक खास जगह दी, मुंशी प्रेमचंद जी। क्योंकि साल 1936 में आज ही के दिन हिंदी साहित्य के वो महान जाने माने कथाकार और उपन्यासकार, कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद जी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। तो आज हम आपसे करने वाले हैं इनसे जुड़ी कुछ खास बातें, बने रहिएगा हमारे साथ।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: बिल्कुल म्यूजिकली योर्स है, गीतों के साथ कुछ बातें पिरोकर हम लेकर आते हैं ताकि आपके दिल को छू सकें। भारतीय फिल्मों का साहित्य से गहरा नाता रहा है। भारत में बनी सैकड़ों फिल्में किसी प्रसिद्ध कहानी या उपन्यास पर आधारित होती ही हैं और साहित्य की दुनिया में महान गिने जाने वाले मुंशी प्रेमचंद की कहानी और उपन्यासों पर तो कई फिल्में बनी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के लेखन ने फिल्म निर्माताओं को समाज की सच्चाई को समझने के लिए इंस्पायर किया है। उनकी कहानियों पर सत्यजीत रे साहब से लेकर मृणाल सेन जैसे दिग्गज डायरेक्टर्स ने फिल्म बनाई है। एक फिल्म में संजीव कुमार ने लीड रोल प्ले किया था। सत्यजीत रे के निर्देशन में बनी एक फिल्म ने तो दो नेशनल अवार्ड्स तक जीते हैं।

मुंशी प्रेमचंद जी ने हमें सैकड़ों कहानियां और उपन्यास दिए, ईदगाह, दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, गोदान, कर्मभूमि, निर्मला, सेवा सदन जैसी 250 कहानियां और 12 उपन्यास उन्होंने भारत की आज़ादी से पहले लिखे और भारत की दशा का वर्णन किया। उनकी लिखी कहानियां और उपन्यास आज भी प्रासंगिक है और इन पर आज़ादी के बाद बड़ी बड़ी कई फिल्में बनाई गई। तो आइए इनमें से कुछ फिल्मों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक फिल्म थी हीरा मोती, ये फिल्म साल 1959 में आई थी। फिल्म को कृष्ण चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। लीड रोल में बलराज साहनी और निरूपा रॉय थे। फिल्म की कहानी धुरी नाम के एक किसान और उनकी पत्नी रजिया और उनके दो बैलों हीरा और मोती के इर्द गिर्द घूमती है। एक अमीर जमींदार और उनके बैलों पर जबरदस्ती करके उस पर कब्जा जमा लेता है और एक गरीब किसान किस तरह इसका विरोध करता है, इस पर ये पूरी फिल्म जो है वो बेस्ड है। बेहद खूबसूरत फिल्म, बेहद मार्मिक फिल्म। कभी मौका लगे तो जरूर ये फिल्म देखिएगा।

0: Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on, heal me.
1: ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिन्होंने हमारे दिल पर दस्तक दी और ये ऐसी ही कहानियों और उपन्यासों से निकल कर आती है। इन्हीं के बारे में कुछ और जानकारी देंगे आपको, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
2: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़, म्यूजिकली योर्स।
3: सब चाहते हैं अपना एक मनपसंद घर और सब चाहते हैं एक किफायती ब्याज दर।
4: कॉस्मोस होम लोन ब्याज दर 7.80% से शुरू।
3: 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध। कम से कम प्रोसेसिंग फीस 20 साल तक का अवधि।
4: शर्तें लागू। टोल फ्री नंबर 1800-233-0234।
3: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।
2: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.

वेलकम बैक 107.1 एफएम रेनबो। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। मैं हूं ममता सहगल आपके साथ लेकर कार्यक्रम नमस्ते भारत। और हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों पर बनी हिंदी बॉलीवुड फिल्मों की या फिर फिल्म जगत में बनी फिल्मों के बारे में। सेवा सदनम ये जो फिल्म थी ये भी मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास पर आधारित थी। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो थे के सुब्रमण्यम। तमिल में बनाई गई थी ये फिल्म। इस फिल्म में मशहूर सिंगर एम एस सुब्बलक्ष्मी ने लीड रोल निभाया था। और ये फिल्म प्रेमचंद साहब के उपन्यास सेवा सदन पर आधारित थी, जिसके नाम पर ही इस फिल्म का नाम सेवा सदनम रखा गया था। और इसका जो अनुवाद है वो आर एस सुब्बलक्ष्मी ने किया था। फिल्म का प्रोग्रेसिव प्लॉट होने की वजह से दक्षिण भारत में कुछ लोगों ने इस फिल्म का काफी विरोध भी किया था, लेकिन जब ये फिल्म बनी थी तब उसके बाद जब लोगों ने इस फिल्म को देखा तो काफी सराहा भी था। बट अक्सर होता है कि कई बार जब फिल्में बनती हैं तो कुछ लोग इनका विरोध करते हैं, कुछ लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे ये किस्सा कहानी आगे चलता ही रहता है।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: अपनी पसंद की कोई भी कार ले, कॉस्मोस कार लोन है ना?
2: कार लोन पर 3 करोड़ रुपए तक उपलब्ध, ब्याज दर 8% और अवधि 7 साल तक, शर्तें लागू।
1: सुहाना होगा सफर कॉस्मोस कार लोन के साथ।
2: आज ही नजदीकी ब्रांच में संपर्क करें। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करे समृद्ध।
0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
3: एक और बेहतरीन रचना और एक और बेहतरीन फिल्म गोदान, राजकुमार महमूद और शशिकला स्टारर। ये फिल्म इसनी नाम के एक उपन्यास पर आधारित थी और ये जो फिल्म है गरीब किसानों के शोषण के साथ साथ भारत में गरीबों की आर्थिक रूप से वंचित स्थितियों के इर्द गिर्द घूमती है। ये मुंशी प्रेमचंद जी का आखिरी संपूर्ण उपन्यास था और इस उपन्यास पर आधारित साल 2004 में गुलजार ने 26 पार्ट वाला एक टीवी शो भी दूरदर्शन के लिए बनाया था। इसके अलावा सदगति ये एक फिल्म थी जो इन्हीं के उपन्यास पर बनी थी। ओमपुरी, मोहन अगाशे, गीता सिद्धार्थ और स्मिता पाटिल स्टारर। इस फिल्म को पहले टीवी के लिए बनाया गया था। फिल्म को सत्यजीत रे जी ने डायरेक्ट किया था और ये फिल्म भारतीय जाति व्यवस्था पर कटाक्ष करती है। ये एक मोची, एक जो दुखी मोची था उसके ऊपर आधारित थी और कैसे गांव के पुजारी जो है उससे मुलाकात करके उसकी जिंदगी को बदल देते हैं, इस बात के ऊपर ये फिल्म कहीं ना कहीं आधारित थी और इस उपन्यास से पूर्ण तरह प्रेरित ये फिल्म थी। शतरंज के खिलाड़ी ये भी सत्यजीत रे के डायरेक्शन में बनी पहली हिंदी फिल्म थी। मुंशी प्रेमचंद का नाम इसी उपन्यास में भी है और फिल्म 1856 के दौरान अवध पर आधारित है, जो 1856 का अवध था उस पर। 1857 से ठीक पहले, एक साल पहले की स्थिति को दिखाती है ये फिल्म और ये फिल्म अवध के दो हटाए गए नवाब वाजिद अली शाह और दो राजघरानों के बारे में है जो शतरंज खेलने के शौकीन हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनके राज्य पर कब्जा जमा रही है। इस फिल्म को 2 नेशनल अवार्ड्स भी मिले थे। एक और जो फिल्म थी बेहद खूबसूरत, ओका उरी कथा, प्रेमचंद के उपन्यास कफन पर आधारित है। इसे बंगाली निर्देशक मृणाल सेन ने तमिल में डायरेक्ट किया था। फिल्म वेंकैया और उनके बेटे किस्तैया के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों के विद्रोही और पागलपन भरे विचारों में कहानी तब बदल जाती है जब नीलम्मा आती है। फिल्म में वासुदेव राव, नारायण राव और ममता शंकर मुख्य भूमिका में नजर आए। तो ये थी वो फिल्में जो मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास पर आधारित थी और आज उनकी पुण्यतिथि है, इसलिए हमने उन्हें एक श्रद्धांजलि देते हुए आज आपको उनकी कुछ उपन्यासों के बारे में बताया जिन पर आधारित फिल्में बनाई गई हैं, ना केवल बॉलीवुड में बल्कि साउथ इंडस्ट्री में भी।

आप चाहे हमें हरजाई बोले, चाहे आप हमें जो मर्जी बोले, लेकिन अब हमारे जाने का वक्त आ गया है। लेकिन हाँ, हम इतने भी बेरहम नहीं हैं, इतने भी हम पत्थर दिल नहीं हैं कि आपको बस यूं ही छोड़ जाएं। आपको हम आदित्य के हवाले किए जा रहे हैं, क्योंकि आदित्य आपके लिए लाए हैं बहुत खूबसूरत सा नजराना। आज एक महान कलाकार को हमने अपने बीच से खो दिया है, तो आज वो आपके साथ उन्हीं से जुड़ी कुछ बातें, उन्हीं के बारे में कुछ बातें, उन्हीं के कुछ गीत आपके लिए लेकर आए हैं। तो मेक श्योर कि आप हमारे साथ जुड़े रहें 107.1 FM रेनबो पर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, साथ ही साथ हमारी प्रसार भारती की ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर भी हमसे जुड़े रहिए। FM मुंबई से आप ये ब्रॉडकास्ट कहीं पर भी कभी भी सुन सकते हैं पूरा लाइव। फिलहाल मैं चाहूंगी आपसे इजाजत इस वायदे के साथ कि मेरी और आपकी फिर बहुत जल्द होगी मुलाकात। तो अगली मुलाकात तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जिंदगी एक गीत है, इसे गुनगुनाते रहिए। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि ठीक 11 बजे होंगे समाचार हिंदी में हमारे मुंबई केंद्र से, और समाचारों के उस पार कार्यक्रम ब्रेक फ्री में आदित्य रहेंगे आपके साथ।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, प्रातः के 11 बजे और आप सुनिए इस घंटे के हिंदी मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का औपचारिक उद्घाटन किया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का विषय स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीक नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में होगी। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार GST व्यवस्था में सुधार के अगले चरण के लिए एक 5 सूत्रीय योजना का प्रस्ताव रखेगी। वरिष्ठ अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे के पास डोंडचे में किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने का निर्णय लिया है। पेइचिंग में मानुष शाह और दिया चिताले ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए WTT ग्रैंड चाइना स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली। मानुष और दिया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय मिक्स डबल जोड़ी बन गई हैं। इसी के साथ ये मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।

ग्यारह बजकर 2 मिनट का वक्त और आप लतफंदोज होना शुरू हो चुके हैं अपने दिल की आवाज आदित्य के साथ। ब्रेक फ्री की शुरुआत आमतौर से इस तरह से नहीं होती, कुछ अलग अंदाज में होती है और कुछ उन लोगों की उन शख्सियात की बातें होती हैं या उन किस्सों की बातें होती हैं जो हमें ब्रेक फ्री बनाता है। लेकिन आज भी एक ऐसी शख्सियत की बात होगी जिसने बनी बनाई जंजीरों को तोड़कर एक अपना नया मकाम बनाया, एक अपनी नई राह बनाई। तो होता क्या है कि रोज तमाम कहानियां जन्म लेती हैं, तमाम बातें उनके इर्द गिर्द होती हैं। वो कभी खुशी से लबरेज होती हैं तो कभी उदास भी कर जाती हैं। आज भी एक ऐसी ही कहानी घटी। तारुफ कराते हैं इसी कहानी के मुख्य किरदार से आपको, लेकिन जरा रिवाइंड मोड पर, क्योंकि जिस शख्सियत की दास्तां है उसने भी ब्रेक फ्री अंदाज में अपना जीवन जिया, एक मुख्तलिफ रंग में जिंदगी को जीने का सलीका दिखाया, तरीका बताया। तो दास्तां कुछ यूं है कि जब सब कुछ

ठीक ठाक काम कर लिया और शोहरत की बुलंदी देख ली तो उस काम को शुरू किया जिसका दर्द हमेशा से सालता रहा, परेशान करता रहा। वो था किसानों का दर्द। उसके लिए नाम फाउंडेशन बनाया और उसके तहत सूखाग्रस्त किसानों के जीवन को, उनके जिंदगियों को संवारा। और जब कला जगत में नाम किया या काम किया तो बतौर

0: एक सुनहरा दौर अपने साथ लेकर चले और मराठी रंगमंच के नट सम्राट और इसी नाम से जो नाटक खेला उसमें भी कमाल के अभिनय के लिए जाने गए और बाद में इसी नाम पर या इसी नाम से इसी कथ्य के साथ एक फिल्म भी बनाई नट सम्राट। और फिर बाल्यावस्था का रुख करें तो इनके हिस्से आए तमाम संघर्ष। पिताजी का कारोबार कुछ खास नहीं चला। इस बीच बहुत छोटी उम्र में इन्होंने पोस्टर पेंट करने जैसे कई ऐसे काम किए। तो बात है विश्वनाथ पाटेकर की, यानी नाना पाटेकर की। एक सुबह आज के रोज ऐसी आई जिसने उनके चाहने वालों को उदास कर दिया। आज जीते हैं उन्हीं की जिंदगी को। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो, दिल की आवाज आदित्य के साथ।
1: मैं एनी। मामा पापा का वो नामुमकिन सपना जो सच हुआ है, मैं उनकी दिल की धड़कन हूं जिसे वो सुन नहीं सकते। मैं उनकी पहचान हूं, उनकी आवाज हूं। हमारी छोटी सी दुनिया है सिर्फ तीनों की, लेकिन मैं आसमान को छूना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। आवाज और खामोशी टकराते गए, फिर भी सपने जिंदा हैं, है ना ये नामुमकिन सपना। लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना ना हो।

11:12 का वक्त और आप सुन रहे हैं ब्रेक फ्री अपने दिल की आवाज आदित्य के साथ, और बात हो रही है एक ऐसी शख्सियत की जिसने अपनी जिंदगी में एक ऐसा मकाम बनाया कि जो एक नजीर बन गई, एक उदाहरण बन गया। बात नाना पाटेकर की। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि असली नाम इनका विश्वनाथ पाटेकर था और मोहब्बत का नाम था नाना पाटेकर। 1 जनवरी 1951 में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरूद जंजीरा में इनकी पैदाइश हुई और वालिद साहब जो थे इनके पिताजी दिनकर पाटेकर टेक्सटाइल का बिजनेस करते थे, जो कि कुछ खास चल नहीं रहा था। और उस वक्त तंग हाली के समय में इन्हें 13 साल की उम्र में महज काफ़ी सारे छोटे मोटे काम करने पड़े, जैसे पोस्टर पेंटिंग और ज़ेब्रा क्रॉसिंग और रंगने जैसे काम। और फिर तालीम का सिलसिला शुरू हुआ था। इन्होंने मुंबई के मशहूर सर जे जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स से कमर्शियल आर्ट में डिप्लोमा पूरा किया और कुछ वक्त एक एड एजेंसी में विजुलाइजेशन की नौकरी की और फिर अभिनय की तरफ इनका कदम कैसे बढ़ा उस पर भी आएंगे हम। तो अभिनय की शुरुआत सिर्फ फिल्मों से नहीं हुई, बहुत सारे लोगों ने केवल फिल्मों की वजह से जानते हैं, लेकिन उनका इतिहास एक रंगमंच का एक तवील इतिहास रहा है। रंगमंच में काफ़ी सारा काम उन्होंने किया और रंगमंच के एक खासतौर से मराठी रंगमंच के एक स्थापित नाम रहे। उनके कुछ नाटक भी हैं जैसे हामिदाबाई ची कोठी और पुरुष जैसे नाटकों में इन्होंने अपना दमदार अभिनय किया और तमाम सारे क्रिटिक्स को मुतासर किया।

0: प्रभावित किया और फिर इनके गुरु जिनकी बात होती है उन पर भी आएंगे। लेकिन अभी एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद एक खूबसूरत सा गाना सुनते हैं और फिर जीवन वृत्तांत पर बात जारी रहेगी। आप कहीं भी चाहिए सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ।

नाना पाटेकर उन कलाकारों में से रहे जिनके लिए एक्टिंग सिर्फ डायलॉग बोल देना नहीं था, उनके लिए कैरेक्टर को समझना भी उतना अहम था, उसकी साइकोलॉजी को महसूस करना और दर्शकों के सामने उसको जीना। रंगमंच ने उन्हें एक ऐसी जगह दी जहां कोई रिटेक नहीं होता, सामने सीधे दर्शकों के सामने जो कुछ भी होता है डायरेक्ट होता है और उसी पल अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है। वहां कैमरा नहीं होता, क्लोजअप नहीं होता, एडिटिंग नहीं होती और कोई भी रिटेक नहीं होता, कोई भी कट नहीं बोलता। यही वजह थी कि थिएटर ने नाना पाटेकर को वॉइस, डिक्शन, डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस में मजबूत बनाया। उनकी आवाज में एक खास तरह का वजन था और बहुत ऊंची आवाज में बोले बिना भी वो अपनी बात पहुंचा देते थे। और सबसे जबरदस्त बात कि उनके डायलॉग्स के दरमियान जो खामोशी होती थी वो भी एक अलग इम्पैक्ट क्रिएट करती थी। और ये सब आया कहाँ से? थिएटर से। और जब थिएटर की शुरुआत हुई तो प्रसिद्ध रंगकर्मी विजया मेहता के दिग्दर्शन में उन्होंने शुरुआती लेसन्स सीखे और फिर उनका रुख हुआ मराठी नाटकों की तरफ और वहां से एक स्क्रीन की जो चमक है या इनकी चमक से स्क्रीन को जो चमक मिली वो हमें देखने को मिलती है। एक बेहद खूबसूरत सा गाना सुनते हैं। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, अपने दिल की आवाज आदित्य के साथ।

रंगमंच का एक बेहद खूबसूरत सा सफा अपनी अदायगी की स्याही से भरने के बाद इन्होंने रुख किया फिल्मों का, और रुख हुआ वो भी टेलीविजन के जरिए। और 1978 में इन्होंने स्मिता पाटिल के मशवरे पर, एडवाइस पर, मुजफ्फर अली साहब की फिल्म गमन में बॉलीवुड में, गमन से बॉलीवुड में कदम रखा, ऐसा कहना चाहिए। और उस फिल्म में इनका रोल काफ़ी छोटा था, लेकिन एक तस्दीक हो चुकी थी, एक पुष्टि हो चुकी थी कि एक ऐसा अभिनेता हिंदी फिल्मों को मिलने वाला है जो एक अपनी अलग पहचान के लिए, एक अपनी अलग अभिनय की अदायगी के लिए जाना जाएगा।

0: और छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद एक और खूबसूरत सा नगमा और हमारे आपके दरमियान ये बातचीत जारी रहेगी। सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो मुंबई।
1: अपनी पसंद की कोई भी कार ले, कॉस्मोस कार लोन है ना?
2: कार लोन पर 3 करोड़ रुपए तक उपलब्ध, ब्याज दर 8% और अवधि 7 साल तक, शर्तें लागू।
1: सुहाना होगा सफर कॉस्मोस कार लोन के साथ।
2: आज ही नजदीकी ब्रांच में संपर्क करें, कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करे समृद्ध। सब चाहते हैं अपना एक मनपसंद घर और सब चाहते हैं एक किफायती ब्याज दर।
1: कॉस्मोस होम लोन ब्याज दर 7.80% से शुरू,
2: 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध, कम से कम प्रोसेसिंग फीस 20 साल तक का अवधि,
1: शर्तें लागू। टोल फ्री नंबर 1800-233-0234।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: ஆகாஷ்வாணி எஃப்எம் ரெயின்போ 107.1 மெகாஹெர்ட்ஸ் மியூசிக்கலி யோர்ஸ்.
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
2: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस

ब्रेक फ्री में आज बात हो रही है, मशहूर और बहुत कष्ट के साथ बोलना पड़ रहा है कि दिवंगत एक्टर नाना पाटेकर की। क्रांतिवीर की बात तो हुई और उसके बाद अग्निसाक्षी नामक फिल्म आई 1996 में, और फिर उसी साल एक फिल्म आई खामोशी द म्यूजिकल। इसमें एक ऐसे किरदार को इन्होंने निभाया जो इनके लिए भी नया था और बहुत ही चैलेंजिंग था। उस फिल्म में इन्होंने मूक बधिर का किरदार निभाया और उसको इतनी शानदार अदायगी के साथ निभाया कि वो एक आज भी छाप है और नए एक्टर्स के लिए कुछ ऐसा रोल करने के लिए एक उदाहरण भी है। और फिर दौर बदला और नए तरीक़ों की फिल्मों का दौर आया और फिर 2004 में एक नई तरीक़े की जर्नी शुरू हुई उनकी, और फिर फिल्म आई अब तक 56, और उसके बाद एक ऐसी फिल्म जिसकी शायद किसी को उम्मीद ना हो, उस जॉनर की फिल्म जिसका नाम था वेलकम, जो 2007 में आई, और उस फिल्म से इन्होंने अपनी वर्सेटाइल

को साबित कर दिया कि एक अभिनेता क्या क्या कर सकता है और वो किसी भी बंदिश में बंधा हुआ नहीं है। तो इसमें एक ऐसे किरदार को निभाया जिसमें पहली बार कॉमेडी करते हुए देखे गए और कमाल ही था। और फिर 2016 में नट सम्राट फिल्म आई, जो एक नाटक पर आधारित है और इसी नाम से ये नाटक भी करते रहे। तो ये कुछ इनकी फिल्मी जर्नी रही, जो मतलब जिस पर जितनी भी बात हो हमेशा कम ही रहेगी, और अभी भी बहुत सारी चीज़ों पर बात तो नहीं हो पाई है वक्त की कमी के चलते। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इनकी डायलॉग डिलीवरी और जो वर्सटैलिटी है उसको तो हम जानते ही हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को चलते इन्हीं काम को सराहने के लिए, इनके काम को रिकग्नाइज करने के लिए 2013 में कला और सिनेमा में योगदान देने के लिए भारत सरकार ने इन्हें चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान से अलंकृत किया, जो था पद्मश्री। और फिर 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इनके नाम है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर परिंदा के लिए, बेस्ट एक्टर क्रांतिवीर के लिए, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अग्निसाक्षी के लिए, और कई सारे फिल्म फेयर अवार्ड भी इनके नाम है। और आज वो दिन आया जब हम सभी उदास हो गए और अपनी अदायगी से खुदा की महफिल में एक नया रंग भरने के लिए ये महान शख्सियत कोशिश कर गया। और एक खास काम इनका ये भी है कि जब इन सारी चीजों से जब ये संतुष्ट हो गए, तो फिर दूसरों की सेवा में अपनी जिंदगी को लगाया और नाम फाउंडेशन नाम से एक फाउंडेशन बनाया, जिसमें सूखा प्रभावित और जो फसल प्रभावित होती है किसानों की, उनकी मदद करने के लिए सामाजिक कार्य को करते रहे और बगैर किसी क्रेडिट के या बगैर किसी लाइमलाइट के सारे काम करते रहे। खैर, इस दिवंगत आत्मा को, पुण्यात्मा को FM रेनबो और आकाशवाणी की पूरी टीम की तरफ से सादर नमन।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz Musically yours.
1: नमस्कार, अपराह्न के 12 बज रहे हैं और अब सुनिए हिंदी मुख्य समाचार। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना की अभियानगत क्षमताएं सही दिशा में बढ़ रही हैं और ये बल सतर्क है तथा किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। वो आज हिंडन वायुसेना स्टेशन पर वायुसेना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपने 94 वर्ष के सफर में भारतीय वायुसेना दुनिया के बेहतरीन सैन्य बलों में शामिल एक असाधारण सक्षम नेटवर्क केंद्रित और बहुक्षेत्रीय बल के रूप में विकसित हुई है। पटना से लखनऊ जा रहे इंडिगो के विमान का अगला हिस्सा आज खराब मौसम के बीच बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया और सूत्रों ने बताया कि विमान में 104 यात्री सवार थे और वे सभी सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि विमान सामान्य रूप से लखनऊ हवाई अड्डे पर उतरा। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देशवर्मा ने वरिष्ठ अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार के पक्ष शरद पवार और फिल्म जगत के अनेक हस्तियों ने दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। ICC ने ताजा रैंकिंग जारी कर दी है। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर करियर की सर्वश्रेष्ठ 7वीं रैंकिंग पर पहुंच गए, जबकि एक दिवसीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। T20 में बल्लेबाजों में ईशान किशन पहले, अभिषेक शर्मा दूसरे, जबकि तिलक वर्मा 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं गेंदबाजों की रैंकिंग में अक्षर पटेल 7वें स्थान पर हैं। इसी के साथ ये मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: जी 107.1 FM Rainbow Musical Yours पर शुरुआत हो चुकी है एक म्यूजिकल से सफर की. हम हैं आपके साथ, आदित्य आपके साथ, और एक म्यूजिकल सफर तय करते हैं म्यूजिक कैफे में. एक खूबसूरत से गाने के साथ इसकी शुरुआत करते हैं.

अगर हम आपसे एक सवाल करें, एक बात पूछें कि आपकी आंखों की क्या कीमत है आपकी नजर में, देखिए इसमें भी नजर आ गया। अच्छा, तो शायद आप उस बात की इंटेंसिटी को किस तरीके से समझेंगे या क्या उसकी इंटेंसिटी होगी, शायद आपके लिए ये सबसे अहम बात होगी। और वाकई ये बात व्यक्तिगत तौर पर जितनी अहम है उतनी ही सामाजिक रूप से भी, और इसीलिए इसी की महत्ता को समझते हुए कुदरत का ये जो अनमोल तोहफा हमें मिला है इसको समझने के लिए आज के रोज हम मनाते हैं विश्व दृष्टि दिवस यानी वर्ल्ड साइट डे, जिसमें हम अवेयर होते हैं अपनी दृष्टि के बारे में। ये जो कुदरती देन हमें मिली है जिससे हम तमाम सारी खूबसूरत चीजों के दर्शन कर पाते हैं, देख पाते हैं, उनका दीदार कर पाते हैं और अपनी आंखों को थोड़ा सा लुत्फ दे पाते हैं, वो इसी कारण के हम देख सकते हैं। और इस नजर को, इस दीद को मैं यहां करते हुए देखे एक शेर भी याद आ गया कि माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। खैर ये बात तो है ही, लेकिन अब सोचिए कि जो खूबसूरत सा तोहफा हमें मिला है इसको हम किस तरह जाया कर रहे हैं और किस तरह इसको कहें कि इस पर हरास लगा रहे हैं, इस पर डिप्रिशिएशन लगा रहे हैं, जब हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सही तरीके से इस्तेमाल क्या, हम इसका बहुत ज़्यादा स्क्रीन के सामने रहकर और बहुत ज़्यादा बेवक्त मोबाइल स्क्रोलिंग करके या बेवजह स्क्रीन के सामने रहकर जो वक्त अपना इस पर दे रहे हैं, इसकी वजह से हमारी दृष्टि में, हमारी नज़र में, हमारी देखने की क्षमता पर असर पड़ता है। और वो असर ना पड़े इसलिए आप कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कुछ उचित दूरी बना सकते हैं और उचित दूरी भी बना सकते हैं और समय भी तय कर सकते हैं कि आप कितने से कितने वक्त तक स्क्रीन के सामने रहेंगे। अगर बहुत ज़रूरी है तो ही आप स्क्रीन के सामने रहें और अगर नहीं ज़रूरी है तो उससे दूरी बनाएं। खैर ऐसी बातें होती रहेंगी, फिलहाल एक खूबसूरत सी बात करने के लिए, एक मोहब्बत के एहसास से भर देने के लिए एक नगमा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इश्क क्या नहीं करता, इश्क क्या क्या करता है, ये भी ये गाना बताता है। सुनिए

0: सब चाहते हैं अपना एक मनपसंद घर और सब चाहते हैं एक किफायती ब्याज दर।
1: कॉस्मोस होम लोन ब्याज दर 7.80% से शुरू।
0: 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध। कम से कम प्रोसेसिंग फीस 20 साल तक का अवधि।
1: शर्तें लागू। टोल फ्री नंबर 1800-233-0234।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। जीवन बनाए समृद्ध।
2: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
3: Music FM लुत्फंदोज़ हो रहे हैं आप अपने दिल की आवाज़ आदित्य के साथ और आज के रोज हम मना रहे हैं भारतीय वायुसेना दिवस और थोड़ा सा इसके बारे में और इसके इतिहास के बारे में जानते हैं और हमारी जो वायुसेना है वो कितनी कैपेबल है, कितनी सक्षम है, कितनी समर्थ है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हमारी वायुसेना जो है सिर्फ 4 वेस्टलैंड वापती विमानों और 5 पायलटों के साथ एक सहायक वायुसेना के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन आज ये दुनिया की सबसे बड़ी चौथी वायुसेना बन चुकी है जिसके पास लगभग 1,70,000 सक्रिय और 1,500 से अधिक विमान हैं। अत्यधिक लड़ाकू विमान भी हैं इसके पास। वायुसेना के पास फ्रांस से आए राफेल और रूस से आए सुखोई और मिराज 2000 मिग 29 और भारत में ही निर्मित स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस LCA तेजस शामिल है और सेना की तेजी से तैनात करने के लिए भारतीय सेना के पास अमेरिकी C-17 ग्लोबमास्टर 3 और C-130J सुपर हरकुलिस जैसे विशाल मालवाहक विमान भी हैं जो दुर्गम इलाकों में दुनिया के किसी भी कोने में भारी मशीनरी पहुंचा सकते हैं और वायुसेना के पास हमलावर हेलीकॉप्टर के रूप में अपाचे और भारी वजन उठाने वाला चिनूक और भारत का स्वदेशी प्रचंड और रुद्र हेलीकॉप्टर भी मौजूद है। वायुसेना अब AWACS यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम से भी लैस है, यानी आसमान में उड़ने वाले रडार और नेत्र यानी NTRA प्रणाली जैसे विमानों से भी लैस है जो दुश्मन के विमानों पर नजर भी रख सकती है और उसको पहचान कर किसी भी हमले से सचेत कर सकती है और उसे निष्क्रिय करने में भी सक्षम है ना, ये कुछ खास

बारह बजकर 24 मिनट का वक्त और म्यूजिक FM लुत्फुंदो सो रहे हैं आप अपने दिल की आवाज़ आदित्य के साथ। और एक ख़ास बात आपको बता दें कि अभी से कुछ देर में यानी कि 12:30 बजे से आप सुनेंगे NCERT का एक ख़ास प्रोग्राम उमंग और काफ़ी कुछ आप जानेंगे और सीखेंगे इसके बारे में, तो उसे सुनना मत भूलिए। और अब वापस आते हैं आज के दिन से जुड़ी एक बात पर। और आज से जुड़ी एक बात ये भी है कि आज का दिन से एक ताल्लुक मुंशी प्रेमचंद का भी है। आधुनिक हिंदी और उर्दू साहित्य के सबसे प्रभावशाली कथाकारों में जो गिने जाते हैं, उन्हें हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उन्होंने शुरुआत में उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया और बाद में प्रेमचंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। सबसे बड़ी विशेषता उनकी ये रही कि साहित्य का जो तिलिस्म अय्यारी और कोरी कल्पनाओं से निकलकर आम आदमी की यथार्थ और वास्तविक धरातल पर जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, उनको उन्होंने अपनी लेखनी में अपने कलम से अमर कर दिया। विशेषकर समाज की ग्रामीण व्यवस्था, जो गाँव में जो जीवन जिया जा रहा है और जो त्रासदियाँ वहाँ की हैं, उनको उन्होंने आवाज़ बनाया। जैसे किसानों की बदहाली, सामंती शोषण, महाजनी प्रथा, जातिवाद, छुआछूत और नारी की विवशता जैसे गंभीर मुद्दों पर उन्होंने कलम चलाई। गोबान, गोदान, गवन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि और सेवा सदन, ये उनके

कुछ ऐसे उपन्यास हैं जिनको महाकाव्य तक माना जा सकता है, और फिर उनकी कुछ कहानियाँ जो बहुत छोटी सी बहुत कम वक्त में बहुत सारी बातें कह जाती हैं, वो हैं कुछ यूं: कफन, ईदगाह, पूज की रात, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, और उनकी 300 से अधिक कहानियाँ उन्होंने लिखी, उसमें मानसरोवर नाम की पुस्तक जो 8 खंडों में छपकर आई और वो देखने को मिलती है। तमाम सरे आपको जिंदगी के द्वंद्व, जिंदगी के परेशानियां और जिन मुद्दों पर आमतौर से बात नहीं होती है, उन मुद्दों को उन्होंने कहानी में बहुत ही खूबसूरत तरीके से दर्शाया। और आज ही के रोज उन्होंने 1936 में इस दुनिया फानी को अलविदा कहा था। खैर, अभी के लिए हम भी आपको अलविदा कहते हैं, और बहुत जल्द ही आपके अपने प्रोग्राम हिट एंड हॉट में आपसे फिर से मुलाकात होगी 1 बजे, और एक खूबसूरत सा गाना, और उसके बाद NCERT का उमंग प्रोग्राम सुनेंगे आप, और फिर हमारी दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इस गाने का लुत्फ लीजिए और कहीं बजाइए सुंदरी 107.1 FM रेनबो।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आज के उमंग कार्यक्रम में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
0: और अजीत का भी नमस्कार।
2: सुनते हैं आज का सुविचार माँ महामाया चौक मेघा।

0: अरालूर में छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल, टेकलाल पटेल जी ने सुविचार भेजा है। वो लिखते हैं
1: समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह का आगाज होता है। बस विश्वास रखिए, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है।
0: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो पहला संदेश हमें मिला है गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना। लिखते हैं, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता आदरणीय विमलेश जी और अजीत जी को सादर नमस्कार। आगे लिखते हैं,
0: उमंग कार्यक्रम के सितम्बर माह के मासिक श्रोता संवाद में श्वेता तंवर जी के साथ जेंडर समावेशन जैसे महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषय पर चर्चा हुई, जो अत्यंत सार्थक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रही। समान अवसर, सम्मान तथा बिना किसी लैंगिक भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के अधिकार पर आधारित ये संवाद हमारी सोच को व्यापक बनाने वाला रहा।
1: आप आगे लिखते हैं, आपका यह मासिक कार्यक्रम विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के लिए अत्यंत उपयोगी है।
0: जी,
1: इसके माध्यम से उन्हें NCERT द्वारा संचालित विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी प्राप्त होती है तथा वे इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित होते हैं।
0: जी।
1: ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम विद्यार्थियों में जागरूकता, सकारात्मक सोच एवं सीखने की भावना को बढ़ावा देते हैं। इस उपयोगी एवं प्रेरणादायक कार्यक्रम के लिए हार्दिक धन्यवाद एवं हमारा आभार।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल
1: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी लिखते हैं।
0: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में हमें बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी सुनने को मिलती है। आविष्कारों के बारे में जानने के साथ साथ भारत के अनमोल ज्ञान, संस्कृति और गौरवशाली विरासत की भी जानकारी मिली। हर प्रस्तुति कुछ नया सीखने और जानने की उमंग जगा देती है।
1: जी।
0: ऐसे शानदार ज्ञानवर्धक और रोचक कार्यक्रम के लिए पूरी टीम को हृदय से बधाई और साधुवाद।
1: और अगला संदेश हमें मिला है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। तो लिखते हैं, प्रिय विमलेश जी और अजीत जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पूरी उमंग टीम और सभी श्रोताओं को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमें दिनांक 14/9/2026 का उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने एक प्यारे डॉगी के बारे में बताया जो अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक की कक्षा 2 पर आधारित थी। वो कहानी हमें बेहद पसंद आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी तरह से कार्यक्रम पेश किया।
0: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र रौनक सेन ने लिखा है,
1: आपका कार्यक्रम उमंग हमें बड़ा सुंदर और शिक्षाप्रद लगता है, साथ ही साथ ज्ञानवर्धक भी। हम इसके नियमित श्रोता हैं। आगे लिखते हैं कि जीवन को खुशहाल और पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए एक पेड़ हर वर्ष अवश्य लगाएं। धन्यवाद।
0: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश देने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं प्रतिष्ठित पुरस्कारों की।
1: जी, तो श्रोताओं, इस क्रम में आज हम बात करेंगे भारत के सर्वोच्च सैनिक वीरता सम्मान परमवीर चक्र की।
0: जी।
1: वैसे परमवीर चक्र का नाम तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी शायद बहुत कम लोग जानते हैं।
0: तो आइए करते हैं शुरुआत और जानते हैं इसके बारे में। श्रोताओं, परमवीर चक्र की स्थापना हमारे प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ये सम्मान जल, स्थल और वायु में शत्रु पक्ष का सामना होने पर सैनिकों द्वारा दिखाई जाने वाली असाधारण वीरता और साहस दिखाने वाले भारतीय सैनिकों को प्रदान किया जाता है।
1: यानी ये विशिष्ट रूप से युद्ध भूमि में दिखाई गई सर्वोच्च वीरता को दिया जाने वाला सम्मान है। आपको बता दें श्रोताओं कि इसे सैनिकों को मरणोपरांत भी दिया जाता है, और ये चक्र यूनाइटेड किंगडम के विक्टोरिया क्रॉस और संयुक्त राज्य अमेरिका के मेडल ऑफ ऑनर के बराबर है।
0: जी, तो अजीत जी, अब बात करते हैं इसके डिजाइन की कहानी पर। इस पदक को डिजाइन किया श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर जी ने। वे स्विट्जरलैंड में जन्मी, उनका मूल नाम था एवानून लिंडा। वहाँ वे रॉयल मिलिट्री अकादमी के भारतीय कैडेट विक्रम रामजी खानोलकर से मिली और उनकी जीवन संगिनी बनी।
1: जी हाँ श्रोताओ, वे भारतीय सैन्य परंपराओं और भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित थीं।
0: जी,
1: उन्होंने भारतीय संस्कृति और सैन्य परंपराओं का गहरा अध्ययन किया था। और वे एक बहुत अच्छी कलाकार भी थीं।
0: जी।
1: कला कौशल और भारतीय संस्कृति से अनुराग रखने के कारण उन्हें परमवीर चक्र को डिजाइन करने के लिए चुना गया।
0: ये कांस्य का गोल पदक है और इसे

0: बैंगनी रंग के रिबन के साथ पहनाया जाता है। ये जानना बहुत रोचक होगा कि भारतीय सेना के इतिहास में पहला परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया।
1: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर जी की बेटी कुमुदिनी शर्मा के देवर मेजर सोमनाथ शर्मा को सन 1947 में बड़गाम की लड़ाई में वीरता दिखाने के लिए सर्वप्रथम परमवीर चक्र प्रदान किया गया।
0: बहुत रोचक। इस सम्मान की मूल भावना है कर्तव्य, साहस और सर्वोच्च बलिदान। अजीत जी, क्या परमवीर चक्र केवल थल सेना के सैनिकों को ही दिया जाता है?
1: नहीं विमलेश जी, ऐसा नहीं है। ये भारतीय सशस्त्र सेनाओं के उन सदस्यों को दिया जाता है जिन्होंने युद्ध के दौरान असाधारण वीरता दिखाई हो या भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता सम्मान है।
0: और इसे प्रदान कौन करता है?
1: परमवीर चक्र भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। परमवीर चक्र केवल एक सैन्य पदक नहीं बल्कि भारत के उन वीर सैनिकों की स्मृति और सम्मान का प्रतीक है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च योगदान दिया।
0: भारत के वीर सैनिकों को हमारा नमन। जय हिंद।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र के बारे में। तो अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, परमवीर चक्र पदक को डिजाइन किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: परमवीर चक्र पदक को डिजाइन किसने किया था? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है किसान की होशियारी।
0: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक में मुद्रित एक लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि किसान ने कैसे अपने चातुर्य और बुद्धिमत्ता से भालू से पीछा छुड़ाया और अपनी जान बचाई।
2: एक किसान अपना खेत जोत रहा था, अचानक कहीं से एक भालू आ गया। भालू किसान को मारने झपटा। किसान ने कहा,
3: मुझे क्यों मारते हो? उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा।
2: भालू ने कहा,
4: भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी।
2: किसान ने आलू बो दिए, उपज हुई तो भालू को पत्ते खाने को मिले। भालू चिढ़कर रह गया। अगली बार भालू ने कहा,
4: इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी।
2: इस बार किसान ने गेहूं बो दिया, जब उपज हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं, भालू को मिली केवल जड़ें। भालू खींच कर रह गया। इस बार भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। उसने किसान से कहा,
4: भूमि के सबसे ऊपर और भूमि के नीचे की उपज मेरी।
2: किसान मान गया। इस बार किसान ने लगाया गन्ना, जब उपज हुई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें, भालू का सिर चकरा गया।

0: अभी आपने सुना ये हास्य प्रधान कार्यक्रम किसान की होशियारी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया, माँ की गोद ने और नदियों की घाटियों ने। हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा।

0: नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।
1: लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी ना समझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं।
1: हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन,
1: क्या करेगी इनका तू है?
2: क्या करूंगी? गमकुआ इतर बनाऊंगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे शरबत बनता है?
1: ओह,
2: तो शरबत बनाऊंगी।
1: अरे बस्सी, तू बिल्कुल बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हाँ, चल खचल। अरे चल, सब खोज रहे हैं तुझे। अरे चल ना, जल्दी कर।
2: नहीं।

0: अभी तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था, और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

बेटे तू बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई बेटी, अरे तू विधवा हो गई।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई, मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो, ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको, तुम अपने जीवन दे सको, मायने दे सको।
0: बसंती घबरा कर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते

0: वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
1: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसीदी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे
1: दीदी,
2: क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी। हाँ? वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चलो चलो।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका तो उपाय क्या है, क्या करें? हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।
3: कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।
4: अरे चल जल्दी करना, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, लकड़ियां काट के लानी
2: है। अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
5: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियां काटने।
2: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियां मत काटना।
4: है? वो भला क्यों? हा? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ,
2: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
5: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
4: हाँ?
5: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
4: और क्या
5: है, आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
4: हाँ?
2: देखो, इन जंगल के पेड़ों में ही तो प्राण बसे हैं कोसी के। आमा, तुम तो जरूर जानती होगी, तुम बताओ ना कि क्या रिश्ता है कोसी का हमारे पिनाथ के जंगल से? बताओ ना कि क्या रिश्ता है कोसी का हमारे पिनाथ के जंगल से?
5: आज से 40 साल पहले जब ब्याह कर मैं गांव आई थी, तब तो कोसी अपने उफान पर थी, और आज अब तब में उसके प्राण है। बेटा, तू कौन है, कहां से आई है?
2: अब आमा, मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता।

0: इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
1: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा।
0: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
1: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
2: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो चलो चलो, हाँ जल्दी चलो, हम सबको बताते हैं।

और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, खीराकोटा, कांटली आदि गांव में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।
0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
3: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु,
2: अर्शद,
3: चेतना,
2: कुसुमलता,
3: वीरेंद्र
2: और हमारी आज की विशेषज्ञ
3: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

Musically yours. एक बजकर पांच मिनट का वक्त और आप लुत्फंदोज होना शुरू हो चुके हैं अपने दिल की आवाज़ आदित्य के साथ, और तमाम सारी मोहब्बतें आपकी हम तक पहुंचने लग गई हैं और मोहब्बतें भी आपकी पहुंच रही हैं एक और शख्सियत तक जो अब बदकिस्मती से हमारे बीच

जी, आकांक्षा मनोज जी, मेहर अरोड़ा जी, प्रकाश शिंदे जी, विजेंद्र जी, पंकज जी, प्रदीप जी, यशवंत जी, दीपा जी, राकेश माथुर जी, संदीप कुमार जी, प्रमोद चंजोलकर जी, सुरेश जी, रजनीकांत जी, श्याम सुंदर संतदास जी, श्याम सुंदर जी और अशोक पाटिल जी, राजेंद्र परमार जी, रंजन जी, बाबा जी, प्रवीण जी, शुभदा जी, प्रणव जी, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया मैसेज भेजने के लिए। और क्या है आपके मैसेजेस में बातें, उन पर भी हम चलेंगे। फिलहाल तो एक खूबसूरत से गाने की से इस प्रोग्राम की इब्तिदा कर देते हैं, जिसको भेजा है हमारे पास दीपा पालकर जी ने। तो बिना देरी इस गाने का लुत्फ लीजिए और लौट कर आएंगे तो कुछ और गानों से लुत्फानंदोज करेंगे आपको। और दीपा पालकर जी की गाने के बाद जो दूसरी फरमाइश आप सुनेंगे वो संदीप जी की होगी। दो गाने बैक टू बैक सुनते हैं और फिर उसके बाद बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।

जी हमारे पास जितनी रफ्तार के साथ मैसेजेस आते जा रहे हैं, हमें लग नहीं रहा है कि आज भी सारे गाने प्ले हो सकते हैं। खैर, लेकिन कोशिश ही रहेगी कि जिनके गाने पिछली बार जो हम प्ले नहीं कर पाए थे उनके गानों पर ध्यान दिया जाए, जैसे कि पिछली दो फरमाइशें आपने सुनी ही, और अगले जो गाने हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि एक महान शख्सियत को ट्रिब्यूट देते हुए हैं, उन्हीं की फिल्म से कुछ गाने सुनने की फरमाइश हमारे पास आई है। जैसे कि प्रकाश शिंदे साहब ने फरमाइश भेजी है हमें वजूद फिल्म से गाना सुनने के लिए, और भी कई सारे गाने आपने भेजे थे उन्हीं की फिल्मों के, सभी बेहद खूबसूरत थे तो हमने एक चुन लिया है। और इसी तरह की एक फरमाइश हमारे पास शुभदा जी की भी आई है, क्रांतिवीर फिल्म से। आप सभी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, व्यथित हैं, ऐसे मैसेजेस आपके हमें मिल रहे हैं नाना पाटेकर जी के इस दुनियाए फानी से अलविदा कहने से। और क्या कहें, ये दुख हमें भी बहुत ज़्यादा सता रहा था जब हमने आज सुबह ऐसी खबर सुनी। बहुत मुश्किल से रिसर्च हो पाई, बहुत मुश्किल से स्क्रिप्टिंग हो पाई, और उतना ही मुश्किल हमारे लिए ये बार बार बोल पाना हो रहा है। तो खैर, अब ये बोलना अवॉइड करते हैं और बस उन्हें अपनी यादों में ताज़ा रखते हैं उनके काम से।

लत्वंदोज होते हैं और उन्हें अपने दिलों में जगा देते हैं, है ना। कैसे? जैसे कि उनकी चीज़ों को वो बार बार रिविजिट करके, जैसे कुछ गाने जो हम आपको सुनवा रहे हैं, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz. Musically yours.
1: एक बजकर 41 मिनट का वक्त और एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है, अभिनंदन है और वेलकम है हिट एंड हॉट में लुत्फानंदोज हो रहे हैं अपने दिल की आवाज़ आदित्य के साथ। और बहुत सारे खूबसूरत से मैसेजेस हमें मिल रहे हैं, उसी में से एक खूबसूरत से मैसेज की कुछ बातें हम आपको सुनाना चाहते हैं। और कुछ शायराना अंदाज में फरमाई गई एक बात है, वो फरमाते हैं कि

अरे वो कहाँ चला गया मैसेज? चलिए हम उस मैसेज से कहीं और आगे निकल आए हैं, तो उस पर अभी नहीं चलते हैं। विजेंद्र जी क्या अर्ज करते हैं उस पर चलते हैं। तो विजेंद्र जी फरमाते हैं कि आज जो एक अभिनेता है राजकुमार, उनकी भी जयंती है और उनकी फिल्म से उनकी खूबसूरती पेशकश ये सुनना चाहते हैं और इस पेशकश को वो सुनना चाहते हैं हीर राजा फिल्म से। और चलिए इस गाने को भी सुनते हैं, हालांकि ये गाना भी थोड़ा इसी तरीके से है कि जब कोई जिंदगी में जिंदगी से चला जाता है या जिंदगी में नहीं रहता, तो फिर ये दुनिया ये महफिल किसी काम की नहीं रह जाती।

जी अगला गाना जो आप सुनेंगे वो है फिरोज सिगान फोरिया जी की पसंद का, तो ये हम आपको पहले बता दें क्योंकि हम भूल ना जाएं इसलिए। और जिस मैसेज को हम आपको पढ़ के सुनाने वाले थे वो कुछ यूं है कि सिनेमा का वो बुलंद परिंदा आज खुले आसमान में गया, जिसकी कड़क आवाज से हर जज्बा सीधे दिल से जुड़ गया। देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जब वो बनकर क्रांतिवीर, तिरंगा हाथों में लेकर बदल दी अभिनय की तकदीर। अपराध की दुनिया थर थर कांपी जब नाम था, अपराध की दुनिया थर थर कांपी, नाम था अब तक 56। ईमानदारी और सादगी का सदा माना उन्होंने अपना जीवन। माफिया उदय शेट्टी बनकर वेलकम भी कहना सिखाया, गंभीर किरदारों के बीच रहकर भी दर्शकों को खूब हंसाया। आज अंगार सी सुलग रही हैं सबकी आंखें उनके जाने से, ऐसा महान फनकार न मिलेगा ढूंढने से इस जमाने में। ओम शांति, ईश्वर दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे, ऐसा फरमाते हैं प्रकाश शिंदे जी। और उनकी पसंद का गाना हम आपको पहले ही सुना चुके हैं, ये मैसेज नीचे चला गया था तो मिस हो गया था। बहुत ही खूबसूरत सब शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही खूबसूरत जुगलबंदी आपने जो बिठाई है, और सारी फिल्मों के जो मेन मेन नाम है वो भी आपने शामिल कर लिए हैं, बहुत खूबसूरत मैसेज। और अब चलते हैं अगले मैसेज की तरफ जो हमें भेजा है फिरोज जी ने, और उनकी पसंद का गाना आप सुनने वाले हैं। कई सारे मैसेजेस आपने लगातार भेज दिए थे, और कुछ और नाम हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। और तो कई सारे मैसेजेस ऐसे भी हैं जो जिन पर ध्यान नहीं जा पाया, जैसे कि अभी एक मैसेज हमारे पास आया है मुकेश कश्यप जी, कई सारे नामों के साथ हमारे पास मैसेज आया है। आपका ग्राम हमें बड़ा सही लगता है, बहुत सही नाम है आपका, दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से आप मैसेज कर रहे हैं। किसी भी गीत में नाम शामिल कर लें ऐसा आपने फरमाया है। और वैदेही जी हमें मैसेज करती हैं और कहती हैं चलिए एटलीस्ट 45 मिनट ओके अच्छा प्रोग्राम आपको देर से सुनने को मिला, देर से सुन पाई आप ऐसा अर्ज करती हैं जी। शुक्रिया, आपने जितना भी सुना बहुत बहुत शुक्रिया। विजेंद्र जी का थैंक यू भी आ गया हमारे पास, प्रकाश शिंदे जी का हाथ जोड़ के नमस्ते भी आ गया है हमारे पास, और

और भी कई नाम हैं हमारी इस फहरिस्त में, तो जो नाम हम नहीं पढ़ पाए थे पहले उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे श्याम सुंदर जी, अभिजीत जी, दिग्दर्शन और कविता, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, राकेश माथुर जी, यशमीन, यशु निरंजन, श्रीधर जी, दत्ता केदार जी और एच एस भाटिया जी, गुरमीत सिंह जी, अजय साकरे जी, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया मैसेज भेजने के लिए। और अब वक्त बहुत हो चला है, तो हम चाहते हैं कि बीच बीच में आके आपको डिस्टर्ब ना करें, तो अभी आपसे विदा ले लेते हैं, दो गाने आपको बैक टू बैक सुनवाते हैं। जो अगला गाना आप सुनेंगे वो राकेश माथुर जी की फरमाइश का गाना है, गाना है जिद ना करो, ठीक है, तो उसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए, शुक्रिया आपका।

0: was known for his intense performances, distinctive dialogue delivery and portrayal of complex characters.
1: Kalam wali bhai kranti lana chahti thi. Kalam ke zor par kale vartaman ko khatam karna chahti thi. Kaun samjha uski baat ko? Kise jagati wo? Main jaag gaya. Kuch acha kaam karke ja raha hu. Sukoon hai.
0: A recipient of 3 National Film Awards, he was acclaimed for films including Parinda, Krantiveer, Agni Sakshi, Nat Samrat, Ab Tak Chappan and Yashwant. He made his Bollywood debut with Gaman in 1978 and went on to deliver notable performances in Shakti, The Power, Abharan, Taxi Number 9211 and Rajneeti. He gained widespread popularity as gangster Uday Shetty in Welcome and reprised the role in Welcome Back. He remained active in cinema until his final years, appearing in Houseful 5, O Romeo and Subedar, which was released recently. Prajna, Akashwani News, Mumbai.
2: India has accused Pakistan of doublespeak on terrorism, saying Islamabad is attempting to gloss over its support for terror groups by announcing a reward for information on Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar. India said the world has not forgotten the 9/11, 26/11 and Pahalgam attacks. Exercising its right of reply in the UN General Assembly, India's First Secretary Raghu Puri said terrorism cannot be defeated through declarations and called for action against its perpetrators, financiers and sponsors. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall conditions over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Uttarakhand, West Bengal and Sikkim during the day. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says government to connect 25 crore students through digital and online education programs. 5G connectivity reaches every district with over 5,50,000 base stations. GST Council deliberates on policy reforms to resolve disputes and improve input tax credit flow. Supreme Court directs Centre to form committee to curb unethical pharma marketing practices. Veteran actor Nana Patekar passes away. India accuses Pakistan of doublespeak on terrorism, says Islamabad cannot gloss over support to terror groups. And the nation honors sacrifices of air warriors on Air Force Day. With that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ छात्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशनों के साथ 5G कनेक्टिविटी हर जिले तक पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद में विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करने का निर्देश दिया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये अपनाने का आरोप लगाया। कहा पाकिस्तान आतंकवादी गुटों को समर्थन देने की बात छुपा नहीं सकता। और देश वायुसेना दिवस पर सेना के जवानों के बलिदान को नमन कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है।
4: बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है। इसके लिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है। हमें IMC को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं तक लोगों को पहुंचाने में सुविधा दी है। प्रधानमंत्री

0: मोदी ने कहा कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
1: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट्स दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार ऑपरेटरों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की।
2: 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य का भारत कनेक्टेड रहे, भविष्य के भारत में डिजाइन रहे और भविष्य का भारत नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस एक दशक में जो संपूर्ण भारत की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रेटर्निटी ने करके दिखाया है वो शायद कई और देशों को सदियों लग जाती जो 10 वर्ष की अवधि में भारत ने करके दिखाया है।
0: इस आयोजन में दुनिया भर के तकनीकी क्षेत्र के दिग्गजों, नेत्र निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नव प्रवर्तकों को एक मंच पर लाया गया है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में GST विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा हो रही है। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार स्टार्टअप, शिक्षण संस्थानों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के व्यापक वर्ग तक AI की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अब उन देशों में शामिल है जिन्होंने AI को अपनाकर इसके वास्तविक लाभ हासिल किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टरों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य फायदों सहित फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने ये निर्देश उस याचिका की सुनवाई के दौरान दिए जिसमें दवा कंपनियों और डॉक्टरों के बीच अनैतिक व्यवहारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी। प्रस्तावित समिति संबंधित पक्षों की राय और सुझाव पर विचार करेगी, साथ ही ये देखेगी कि क्या दवा कंपनियों की विपणन पद्धतियों को नियंत्रित करने के लिए किसी वैधानिक ढांचे की जरूरत है या नहीं, और यदि है तो उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए। केंद्र सरकार से इस संबंध में हलफनामा दायर करने को कहा क्या है। अगली सुनवाई अगले साल 29 जनवरी को होगी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छुपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11, 2008 के मुंबई और 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। एक रिपोर्ट।
5: संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रथम सचिव रघु पुरी ने कहा कि केवल घोषणाओं से आतंकवाद का खात्मा नहीं किया जा सकता। श्री पुरी ने आतंकवादियों, उनके वित्त पोषकों और समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने मसूद अजहर के अफगानिस्तान में छिपे होने के पाकिस्तान के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि तालिबान सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया है। श्री पुरी ने मसूद अजहर के बारे में सूचना देने के लिए 70 लाख रुपए के इनाम की नई घोषणा को भी दिखावा बताया। प्रमुख आतंकवादी हमलों का उल्लेख करते हुए श्री पुरी ने कहा कि आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराना आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को कमजोर करता है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और घाना लंबे समय से साझेदार हैं। दोनों देश ग्लोबल साउथ के प्रमुख देशों के रूप में स्वास्थ्य, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, खनन, रक्षा, रेलवे और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा, जैव विविधता, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में समझौते किए। भारत ने पिछले कुछ दिन में रियाद के अबहा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमलों की कड़ी निंदा की है। इसमें आम नागरिकों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में ऐतिहासिक जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्विकास की जानकारी दे रहे हैं।
6: जलियांवाला बाग का जिक्र होते ही वर्ष 1919 में अमृतसर में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा किए जुल्म की दर्दनाक यादें ताजा हो जाती हैं। वह 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था जब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर ने अपने सैनिकों से सैकड़ों बेगुनाहों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाकर उन्हें मार डाला था। ये लोग रॉलेट एक्ट का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उस समय इन शहीदों की याद में बने जलियांवाला बाग यादगार को दशकों बाद पुनर्विकसित कर 28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया। जलियांवाला बाग कॉम्प्लेक्स में विकास के कई काम हुए। पंजाब की अपनी भवन निर्माण शैली के अनुसार इसकी विरासत बहाली का काम बहुत ध्यान से किया गया। उस वक्त पंजाब में घटित ऐतिहासिक अहमियत की घटनाओं को दिखाने के लिए 4 म्यूजियम गैलरियां बनाई गईं और एक साउंड एंड लाइट शो शुरू हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों से इस यादगार को देखने और नतमस्तक होने आए सैलानियों ने इसके पुनर्विकास के काम की तारीफ की।
7: जो हमने किताबों में पढ़ा था वो मैंने आज यहाँ पे आकर के खुद ने अपनी आंखों से देखा और मुझे महसूस भी हो रहा है। गवर्नमेंट इंडिया ने बहुत अच्छा किया है जिससे कि यहाँ पे सब कुछ युवा पीढ़ी है जो और आगे की जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि वो आगे आएंगे, आने वाले पीढ़ी भी देखेगी यहाँ पे कि पहले कैसे हुआ था और क्या हुआ था। गवर्नमेंट इंडिया को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा।
8: मैं बहुत टाइम पहले आई थी उसमें लेके और अब से बहुत काफी सारे चेंजेस हुए हैं। पहले ये मेंटेन नहीं था, काफी अच्छे से मेंटेन किया गया और यहाँ पे गार्डन बहुत अच्छा है, बहुत सफाई है। यहाँ पे इवनिंग में लाइटनिंग भी होती है, पूरा हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कैसे कैसे क्या हुआ पहले और क्या क्या चेंजेस अभी आए हैं। आने वाली पीढ़ी जो आगे आ रही है जनरेशन, उनको इसके बारे में काफी अच्छे से डीपली पता चलेगा।
9: मेरा नाम आशीष कुमार मिश्रा है, मैं वाराणसी से आया हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ के बारे में सुना हुआ था अपने दादा परदादा के मुँह से, बट आज हमने ये कुछ चीजें आके यहाँ पे वो देखे कि जैसे लगा कि हमने मतलब अपने मिट्टी से जुड़े हुए सब चीजें हमको यहाँ पे मिला और काफी चीजें देख को हमको ये लगा कि उस समय जो हुआ था हमारे यहाँ के गवर्नमेंट सरकार ने ऐसा कुछ किया है कि ये चीजें देख के जाने के बाद हम अपने अगली पीढ़ी को भी बता सकते हैं कि एक बार वो यहाँ पे आए जरूर।
6: जलियांवाला बाग मेमोरियल को आजादी की लड़ाई के दौरान भारतीयों के बलिदान की निशानी के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेता थे।
10: कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो।
11: विश्वनाथ पाटेकर, जिन्हें दुनिया नाना पाटेकर के नाम से जानती है, उनका जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के मुरुड जंजीरा में हुआ था। नाना पाटेकर उन कलाकारों में से थे जो पर्दे पर आते ही किरदार में जान डाल देते थे।
12: आज तुमने राम और अल्लाह को मारने की कोशिश की है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है, इंसानियत।
11: 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित नाना पाटेकर ने परिंदा, क्रांतिवीर, अग्नि साक्षी, नट सम्राट अब तक 56 और यश

0: जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से अमिट छाप छोड़ी। वर्ष 1978 में गमन से बॉलीवुड में कदम रखने वाले नाना पाटेकर ने अलग अलग तरह के किरदारों को पर्दे पर जीवंत किया। शक्ति द पावर, अपहरण, टैक्सी नंबर 9211 और राजनीति जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। फिल्म वेलकम में गैंगस्टर उदय शेट्टी के किरदार से उन्हें खास तौर पर लोकप्रियता मिली। नाना पाटेकर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी सिनेमा से अपना रिश्ता बनाए रखा। हाउसफुल 5, ओ रोमियो और हाल ही में रिलीज हुए सूबेदार में भी नाना नजर आए। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज शाम 4 बजे पुणे के पास डोंजे में अंतिम संस्कार किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने आज वायुसेना की बढ़ती क्षमताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वायुसेना की असली ताकत केवल उन्नत उपकरणों और तकनीक में नहीं बल्कि इसके योद्धाओं में निहित है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ छात्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा, 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशनों के साथ 5G कनेक्टिविटी हर जिले तक पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद में विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करने का निर्देश दिया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया और देश वायुसेना दिवस पर सेना के जवानों के बलिदान को नमन कर रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

में नमामि गंगे कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई और नदी पुनर्जीवन में तेजी लाने के लिए उद्देश्य से किए जा रहे प्रमुख उपायों पर विचार विमर्श किया गया। आयुष मंत्रालय ने बताया है कि आयुष सेवाओं के कुल श्रम बल में 43% महिलाएं हैं। ये क्षेत्र अनुमानित 17,60,000 आजीविकाओं को सहयोग दे रहा है। वायुसेना दिवस आज मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छिपाने की कोशिश कर रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और घाना लंबे समय से साझेदार हैं। दोनों देश ग्लोबल साउथ के प्रमुख देशों के रूप में स्वास्थ्य, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, खनन, रक्षा, रेलवे और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 वर्ष की आयु में गोवा में निधन। दिवंगत अभिनेता का आज शाम पुणे के पास डोंजे में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। त्योहारों के सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच आरक्षित विशेष रेलगाड़ियों के 2 फेरे चलाएगा और मानुष शाह और दिया चिताले की भारतीय जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। 30 घंटे के FM रेनबो मुख्य समाचार। आगे हमारे प्रोग्राम

0: आसमान की बुलंदियों पर जब तिरंगा लहराता है तब दिखता है भारतीय वायुसेना का शौर्य पराक्रम। 8 अक्टूबर 1932 से लेकर आज तक इंडियन एयरफोर्स ने हर चैलेंज, हर चुनौती का साहस और वीरता से सामना किया है, कभी युद्ध भूमि में तो कभी आपदा राहत में। देश सेलिब्रेट कर रहा है आज एयरफोर्स डे, इंडियन एयरफोर्स डे 2026, द डे ऑफ प्राइड एंड ऑनर, जब हम सल्यूट करते हैं अपने वीर जांबाजों को जिनकी उड़ान ने भारत को सेफ एंड सिक्योर रखा है। नवास्पर्शम दीपतम टच द स्काई विद ग्लोरी। आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो, और आज का संदेश टू सोल्जर्स है एयरफोर्स डे स्पेशल। आप हैं शाहिद के साथ और हमारे साथ हैं वायुसेना मेडल से सम्मानित सीनियर फेलो एट द मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर पायलट ग्रुप कैप्टन डॉक्टर राजीव कुमार नारंग। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो संदेश टू सोल्जर्स में आज के इस खास दिन।
1: धन्यवाद, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आम लोगों से अपनी भारतीय वायुसेना के दिवस के मौके पर आप लोगों से मिल पाया और अपने लोगों से भारत की वायुसेना के का पुराने सैनिक खोजने के नाते
0: जी
1: आप लोगों से बात करके कुछ अपने विचार शेयर कर पाऊँ, कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ और कुछ फ्यूचर भारत को कैसे एरोस्पेस पावर बनना है
0: जी
1: उस पर बात कर पाऊँ।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला और आपकी जो ये कीमती बातें हैं वो हम आज के अपने शो में करेंगे। और हम चाहेंगे अपने लिसनर से हमेशा की तरह से कि आप हमें मैसेज करें, हमारा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9868107070। मोबाइल ऐप पर आप हमें सुन रहे हैं, न्यूज़ ऑन AIR हमारी मोबाइल ऐप है जिस पर आप हमें लाइव सुन रहे हैं। हमारे साथ हैं आज के हमारे बहुत ही खास मेहमान आज के बहुत ही खास दिन एयरफोर्स डे स्पेशल शो में ग्रुप कैप्टन डॉक्टर राजीव कुमार नारंग। सर आज एयरफोर्स डे है, एक बेहद ही स्पेशल दिन, न सिर्फ भारतीय वायुसेना के लिए, उसके पराक्रम शौर्य के लिए, बल्कि साथ ही साथ पूरे देश के लिए और देशवासियों के लिए। तो आप सर आज के दिन को किस तरह से देखते हैं?
1: देखिए, भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर 1932 में कराची, जो आजकल पाकिस्तान में है, एक दिग रोड एयरफोर्स स्टेशन था जहाँ पर सिर्फ केवल 4 वापिती जहाजों से बनी थी, जो छोटे से 2 बाइप्लेन होते थे
0: जी।
1: और उसको देख के आपने ऑफ सिंदूर में देखा कैसे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को अपने अच्छा करारा जवाब दिया जब उन्होंने हमारे यहाँ पर एक टेररिस्ट अटैक किया
0: जी।
1: और फिर भारतीय वायुसेना ने अपना संयम दिखाते हुए सिर्फ टेररिस्ट को ही अटैक किया और कोई अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं किया।
0: बिल्कुल।
1: तो ये 94 भारतीय वायुसेना की एनिवर्सरी पर मैं भारतीय वायुसेना के अधिकारी
0: जी,
1: एयरमैन, नॉन कॉम्बेटेंट, सिविलियंस, संगनीज और वो सब लोग जो भारतीय वायुसेना से जुड़े हैं उनको मैं अपनी दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसे भारतीय वायुसेना अपने देश की सीमाओं वायु की रक्षा करती रही है, वैसे ही आप लोग करते रहिए और हम चाहे वर्दी छोड़ चुके हैं, हम आपके साथ हैं और हमें आप पे गर्व है। आपको हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही काम करते रहें। और इस साल जो है भारतीय वायुसेना की परेड हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में हुई थी
0: जी।
1: ये 3 वर्षों के बाद थी कि हिंडन में दोबारा हुई और थीम दिया गया था स्पेशल, जिसे हमने दिया गया इनफॉलिबल, जिसका मतलब है अचूक
0: जी।
1: और ये अचूक हमने दिखाया कि हम कितने अचूक थे जब हमने अटैक किया पिछले मई 2025 को। इम्परवेश अभेद, मतलब जिसे कोई रोक नहीं पाई दुनिया की, कोई डिफेंस नहीं रोक पाई
0: जी, जी।
1: और प्रिसाइज, आपने देखा होगा कि कैसे हमने छोटी सी जगह पर जाके बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे अटैक किया। तो भारतीय वायुसेना का ये जो थीम है,

तरीके से आपने कहा कि वर्दी आपने भले ही छोड़ दी या रिटायर हो गया, लेकिन उसके बावजूद देशभक्ति की भावना है और जो अपनी एयरफोर्स के लिए जो आपका डेडिकेशन है और जो कंट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल एकदम अनएक्सप्लेनेबल है और बहुत ही स्पेशल है। आप सुन रहे हैं 102.6 देश का नंबर 1 रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। आज का डेडिकेटेड है, एयरफोर्स डे स्पेशल है आज का, और आज के हमारे बहुत ही स्पेशल मेहमान हैं ग्रुप कैप्टन डॉक्टर राजीव कुमार नारंग। तो देशभक्ति की भावना हर देशवासी में मौजूद है। हम आते हैं लौटकर, आप हमें मैसेज करें 9868107070 हमारा है नंबर।

0: संदेश टू सोल्जर्स का आज का खास प्रोग्राम आप सुन रहे हैं शायद के साथ 102.6 देश का नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर। आज है एयरफोर्स डे और एयरफोर्स डे स्पेशल शो में आज हमारे मेहमान हैं ग्रुप कैप्टन डॉक्टर राजीव कुमार नारंग जी। सर एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा हमारे आज के स्पेशल शो में। सर हमारे पास ऑनरेबल चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का मैसेज है। हम चाहेंगे कि हम सब हमारे लिसनर्स को भी उनका ये मैसेज सुनाया जाए।
1: This is Delhi. Please stand by for our next program. This is Akashwani. On the eve of the 94th anniversary of Indian Air Force, we now bring you a message by the Chief of Air Staff, Air Chief Marshal Amarpreet Singh, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal.
2: भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर प्रस्तुत है भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल का संदेश।
3: नमस्कार, भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर सारे वायु योद्धाओं की ओर से मैं सभी देशवासियों को नमन करता हूँ।

0: वायुसेना दिवस हमारी उस गौरवमयी यात्रा का उत्सव है जो अटूट निष्ठा, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान की नींव पर रची गई है। सन 1932 में मात्र 4 वापिती विमानों से उड़ान भरने वाली हमारी वायुसेना आज एक अत्यंत सक्षम, नेटवर्क सेंट्रिक और बहुआयामी फोर्स बन चुकी है। आज की दुनिया अस्थिर, अनिश्चित और जटिल दौर से गुजर रही है। हितों और परिस्थितियों के लगातार बदलने के इस माहौल में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नए संघर्ष उभर रहे हैं। इन संघर्षों में हमने देखा है कि वायु शक्ति राष्ट्र के हितों की रक्षा करने का एक प्रमुख साधन है। देश की वायु शक्ति का प्राथमिक माध्यम होने के नाते भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। लास्ट ईयर ऑपरेशन सिंदूर रीअफर्म्ड द पिवोटल पावर ऑफ इंटीग्रेटेड एयर ऑपरेशंस, डेमोंस्ट्रेटिंग आवर कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी टू डिफेंड आवर सोवरेनिटी। थ्रू मेजर माइलस्टोन्स दिस ईयर इंक्लूडिंग एक्सरसाइज वायु शक्ति, वेरियस बायोलेटरल एक्सरसाइजेस ड्रोनाथॉन एंड द ऑनगोइंग हिस्टोरिक मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति, वी आर एक्टिवली टेस्टिंग आवर कॉम्बैट रेडीनेस एंड रैपिडली अब्सॉर्बिंग निश टेक्नोलॉजीज इनटू आवर ऑपरेशनल प्लान्स। अपनी मारक क्षमता के अलावा भारतीय वायुसेना ने संकट के समय में हमेशा आगे बढ़कर देश और मानवता की सेवा की है। चाहे देश के विभिन्न प्रदेशों में आई भयंकर बाढ़ के दौरान नागरिकों की सहायता हो या जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पाना हो, हमारे वायु योद्धाओं ने हमेशा कौशल और साहस का परिचय दिया है। हमारी यह प्रतिबद्धता हमारी सीमाओं तक सीमित नहीं है। नेपाल और युगांडा से लेकर वेनेजुएला, फिलीपींस, मेडागास्कर, थाईलैंड, क्यूबा और जमैका तक हमारी वायुसेना ने HADR मिशनों के माध्यम से सेवा के इसी संकल्प को निरंतर आगे बढ़ाया है, जो सेवा परमो धर्म एवं वसुधैव कुटुंबकम की सच्ची भावनाओं को दर्शाता है। आत्मनिर्भरता हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अंकुर ट्रेनर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, अस्त्र आकाश तथा ब्रह्मोस जैसी स्वदेशी प्रणालियां इसी संकल्प का प्रमाण है। आत्मनिर्भरता की इस नींव पर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को तेजी से अपनाना भारतीय वायुसेना की सर्वोच्च प्राथमिकता बन चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑलरेडी फाइंडिंग इट्स वे इनटू एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर फंक्शनिंग। आवर विजन इज टू बिल्ड एन AI ऑगमेंटेड फोर्स वेयर टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स अस बट ह्यूमंस रिमेन इन कमांड। आवर रोल्स एंड टास्क नेचुरली टेक अस बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर एज स्पेस इज अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ द एयर डोमेन। आवर डीपनिंग पार्टनरशिप विद ISRO इंक्लूडिंग आवर कॉन्ट्रीब्यूशन टू गगनयान मिशन रिफ्लेक्ट्स दिस कमिटमेंट। These capabilities form an integral part of our vision for 2047. Technology is only an enabler. The foundation of decisive victory has always been in the unity of purpose. Modern wars are not won by the strength of a single service, but through the combined strength of the entire nation. For Indian Air Force, jointness is the only way forward. Our endeavor is to ensure that the reach, speed, and precision of air power are fully harnessed so that its effects are felt across every dimension of the battle space. इस अवसर पर मैं अपने आदरणीय एयर वेटरन्स को नमन करता हूँ। आपकी दूरदृष्टि, समर्पण और मार्गदर्शी नेतृत्व ने ही इस सशक्त भारतीय वायुसेना की नींव रखी है, जो आज राष्ट्र की सुरक्षा के लिए पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी है। साथ ही मैं अमर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने कर्तव्य के मार्ग पर अपनी प्राणों की आहुति देकर तिरंगे का मान रखा। आई ऑल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्नॉलेज दैट थ्रू एवरी चैलेंज द अनवेवरिंग सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट ऑफ आर फेलो सिटीजन्स हैव बीन अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द इंडियन एयरफोर्स। देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और आप सभी का आशीर्वाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अंत में हम समस्त वायु योद्धा भारतीय वायुसेना अचूक, अभेद एवं सटीक की अवधारणा का स्मरण करते हुए यह संकल्प लेते हैं कि राष्ट्र की रक्षा, उसकी संप्रभुता और अखंडता के लिए हम सदैव समर्पित रहेंगे तथा अपने आदर्श वाक्य नभ स्पृशम दीप्तम पर अडिग रहेंगे। जय हिंद।
1: ऑन द ईव ऑफ द 94th एनिवर्सरी ऑफ

0: इंडियन एयरफोर्स
1: 102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। आज का हमारा स्पेशल शो एयरफोर्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, और हमारे साथ हैं वायुसेना मेडल से सम्मानित सीनियर फेलो एट द मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर पायलट ग्रुप कैप्टन डॉक्टर राजीव कुमार नारंग जी। सर बहुत बहुत एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा आप आज के स्पेशल शो में। और सर इंडियन एयरफोर्स का मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक कोई स्पेशल सॉन्ग भी है
2: जी,
1: तो वो क्या कुछ जोश से भर देता है आपको, पुराने दिनों की याद दिलाता है?
2: भारतीय वायुसेना का एक अपना सॉन्ग है जिसे वायुसेना सॉन्ग कहते हैं
1: जी,
2: और
1: जी,
2: मैं
1: जी.
2: सुनना चाहूंगा क्योंकि ये हमारी लाइफ से एसोसिएटेड है।
1: बिल्कुल सर,
2: यदि आप सुना पाए तो बहुत
1: बिल्कुल सर जरूर। और हम यहाँ पर एयरफोर्स डे का ये गाना हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं और डेडिकेट कर रहे हैं सर आपको भी।

0: सर कैसा महसूस कर रहे हैं ये सॉन्ग सुन करके?
1: मुझे लग रहा है कि ये भारतीय वायु सैनिकों को
0: जी
1: उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी कर्तव्य निष्ठा और उनका जो कमिटमेंट है भारत के प्रति
0: जी,
1: उसकी याद दिलाता है, उसको सेलिब्रेट करता है और बताता है कि कैसे भारतीय वायु सैनिक किसी भी स्थिति के लिए भारत के साथ खड़ा है, भारत के नागरिकों के साथ खड़ा है, भारत की सुरक्षा में खड़ा है और इस देश को किसी की नजर ना लगे उसे बचाने के लिए तैयार खड़ा है। ये भारतीय वायुसेना की अंदर से आई हुई आवाज है जो शायद ये कुछ शब्द कहते हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगा, अभी आज जो हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ, क्योंकि वो हमारे ही चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, उन्होंने कुछ बात कही कि हमारी वायुसेना ड्रोन से लेके हाइपरसोनिक सिस्टम्स के लिए तैयार है,
0: बिल्कुल,
1: जमीन से लेके स्पेस तक के लिए तैयार है। उन्होंने ज्वाइंट प्लानिंग की बात की कि भारतीय वायुसेना हमेशा से ही ज्वाइंट प्लानिंग के लिए हमेशा तत्पर रही है और हमने ऑप सिंदूर में दिखाया कैसे ज्वाइंट प्लानिंग की वजह से हम दुश्मन के हर मंसूबे को धराशायी कर पाए। उन्होंने लीडरशिप की बात की, एक लीडर है जो बहुत ही एडवर्स सिचुएशंस को भी अपने फायदे के लिए, अपने सक्सेस को ट्रांसफॉर्म करता है
0: जी।
1: उन्होंने एक दो बात कही कि देश की सुरक्षा हमारा धर्म है। उन्होंने याद कराया भारतीय वायु सैनिकों को कि ये कभी ना भूलें और उन्होंने नागरिकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि नागरिकों का सहयोग हमारी ताकत है। कैसे एक आदमी भारतीय वायुसेना की ताकत है, उन्होंने एक्सप्रेस किया। और एक जो इम्पोर्टेंट इशू उन्होंने कहा, आत्मनिर्भरता। जब वो बात कर रहे थे एएलएच, अंकुर, ट्रेनर, एलसीए, इन सब के पीछे मैं कुछ बहुत ही कुछ लोगों की बात बताना चाहूंगा जिन्होंने भारत को आत्मनिर्भरता के लिए कब से प्रयत्न कर रहे हैं। और आप इनमें एक हैं डॉक्टर एस आर विल्लूरी, जो अमेरिका में अपना जॉब छोड़ के भारत में, जब इंडिपेंडेंट हुआ भारत में आए और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के एजेंसी के पहले डायरेक्टर बने और उन्होंने कई शुरुआत दी अपनी

0: भारत में एयरक्राफ्ट डिजाइन को शुरुआत में। फिर थे डॉक्टर वी एम घाटगे, आप देखिए 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए
1: जी।
0: और चार साल में उन्होंने भारत का पहला ट्रेनर बनाया जिसको जिसका नाम था हिंदुस्तान ट्रेनर टू। चार साल में कोई गुलाम देश अपना खुद जहाज ट्रेनर बनाए
1: जी।
0: और जबकि वो उसके पास कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है
1: बिल्कुल,
0: तो ये बहुत ही हमारे जो है भारतीय वायुसेना की स्ट्रेंथ है
1: जी बिल्कुल।
0: ऐसे हमारे एक एयर वाइस मार्शल हरजिंदर सिंह है जिनकी बातें मैं बाद में बताऊंगा
1: जी।
0: और कुछ एक रुस्तम भी दमानिया है जिनके नाम पे हमारे रुस्तम ड्रोन है। हमारे कुछ टेस्ट पायलट्स हैं जैसे सुरंजन दास, विंग कमांडर अशोक और बहुत सारे भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलट हैं। और अगर मैं अब के जमाने की बात करूं तो आपका जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है
1: जी,
0: उसके जो जनक मैं कहना चाहूंगा वो है डॉक्टर कोटा हरि नारायण। वो अभी जीवित हैं और इतनी उम्र में अभी भी उतने ही जोश से भारतीय भारत की सेवा में लगे हुए हैं।
1: बहुत खूब सर,
0: तो बहुत हमारे भारतीय वायुसेना को सक्षम बनाने के लिए जो वीर हैं
1: जी,
0: जो
1: जिन्होंने भारत ने
0: कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है जी, शायद वो भी एक ऐसे हैं जिनको हमें इस दिन याद रखना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है और फ्यूचर आत्मनिर्भरता का है, फ्यूचर अपने प्रोजेक्ट्स को वर्ल्ड लेवल की टेक्नोलॉजी पर ले जाने का है, तो हमारे साइंटिस्ट का है, हमारे इंजीनियर्स का है, हमारे इनोवेटर्स का है, हमारे स्टार्टअप्स का है, हमारे एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का है और हमारी भारतीय इंडस्ट्री का है जो भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट करे और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी बनाए कि हम सिर्फ अपने देश की रक्षा ना कर पाएं बल्कि एक्सपोर्ट कर पाएं, हमारी इकोनॉमी को अच्छा बना पाएं और भारत को एक विकसित राष्ट्र बना पाएं।
1: सर जैसे आपने बताया, एक तो इंडियन एयरफोर्स ने जिस तरीके से एक आत्मनिर्भर भारत में इतना जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, जैसे आपने बताया कि हमारी प्रीवियसली जब से देश आजाद हुआ उसके बाद से ही कितने लोगों ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिए। सर और क्या पर्सनैलिटीज हैं जिनको आप मेंशन करना चाहेंगे और इंडियन एयरफोर्स का उस आत्मनिर्भर भारत में भी जो योगदान रहा वो भी बताइए।
0: देखिए भारतीय वायुसेना ने अगर आप देखें जो पहला जो एक दो टू सीट इरका बनाया था वो था 1958 में जिसको कानपुर वन कहते हैं।
1: अच्छा,
0: ये एचएल ने नहीं बनाया था,
1: ठीक है,
0: ये भारतीय वायुसेना के इंजीनियर्स ने कानपुर में बनाया इसलिए इसका नाम कानपुर वन बना।
1: ओके,
0: फिर इन्होंने फोर सीटर बनाया जिसका नाम था कानपुर टू, हालांकि ये लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चला
1: जी,
0: लेकिन भारतीय वायुसेना के इंजीनियर्स बहुत कैपेबल थे
1: जी, बिल्कुल बना पाए वो।
0: हाँ, और मैं एक और बताना चाहूंगा कि एक एवरो जहाज था जिसकी हमने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लिया 1959-1960 के बाद।
1: ओके,
0: और उस वक्त जो था हमने पूरी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बनाई और दो साल में उसको हमने पहला जहाज भारत में बनाया। ये जो इनिशिएटिव था
1: जी,
0: ये एयर वाइस मार्शल हरजिंदर सिंह जो उस वक्त इंचार्ज थे मेंटेनेंस कमांड के, उन्होंने एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिपो बनाया कानपुर में जो उस वक्त के भारतीय वायुसेना चीफ सुब्रतो मुखर्जी उन्होंने इनॉग्रेट किया। और फिर हमने वो जो बाद में जो फाइटर बनाने के काम आया
1: जी,
0: और एयरक्राफ्ट हमने बनाए। तो भारतीय वायुसेना ने आपकी आत्मनिर्भरता में बहुत अच्छा रोल प्ले किया। और अगर मैं रीसेंट इनिशिएटिव देखूं
1: जी,
0: तो 8 अक्टूबर 2018 को भारतीय वायुसेना ने एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम था मेहर बाबा यूएस स्वॉर्म कॉम्पिटिशन। यूएस इज अनमैन्ड एरियल सिस्टम या जिसको आजकल हम ड्रोन भी कहते हैं।
1: जी जी जी।
0: स्वॉर्म की तरह कैसे हम अपनी देश की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट या डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड कर पाएं या अपने देश की सुरक्षा में उसको इस्तेमाल कर पाएं, ये जो कैपेबिलिटी है भारतीय वायुसेना ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया। तो भारतीय वायुसेना बहुत कुछ करती आई है
1: बिल्कुल,
0: और फ्यूचर में हमें बहुत स्कोप है आगे करने का।
1: और सर ये भी जैसे आपने बताया कि हमारा जो आजाद भारत का पहला जहाज जैसे कि आपने बताया
0: HT2 1991
1: बनाया
0: चार साल बाद जी,
1: 1947
0: में इंडिपेंडेंट हुए और चार साल
1: के अंदर
0: हमने एक टू सीटर ट्रेनर बना लिया। और ये बहुत सालों तक हम भारतीय वायुसेना की सेवा में रहा। मैंने इसको उड़ते हुए देखा 1990 के करीब,
1: तब तक उड़ रहा था
0: 1950, इतने साल इसने भारत की सेवा की। तो और बहुत हमारे कैपेबल

0: हमारे इंजीनियर्स रहे
1: सर। यही इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगा सर, जो एयरफोर्स का पहला जहाज वो कब बना?
0: एयरफोर्स का बना जो जो भारतीय वायुसेना ने डिजाइन किया था वो था कानपुर वन, जैसे मैंने बोला 1958 में
1: जी।
0: और हालांकि बाद में हमारा रोल उस तरीके से नहीं था
1: जी,
0: लेकिन एयरफोर्स एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर था जब हम इंडिपेंडेंट हुए। टेक्नोलॉजी में, एविएशन टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारे जो ब्रिटेन और या अमेरिका के पुराने जहाज थे
1: जी जी,
0: उनको कबाड़ खाने से ला के उसको ऑपरेशनल बनाया।
1: ओके
0: okay. और उस वक्त जो था, क्योंकि हमारे इंजीनियर्स जो थे फ्रंट एंड पे नहीं थे, हमारे इंजीनियर्स एक मेंटेनेंस और उन कामों अच्छा। में थे, तो उस समय में एयरक्राफ्ट को साल्वेज यार्ड से निकाल के उसको फ्लाइंग ऑपरेशनल बनाना ये एक बहुत बड़ा रोल है।
1: इनफैक्ट बहुत बड़ा काम था।
0: अगर आप हरजिंदर सिंह जी की स्टोरी सुने
1: जी,
0: तो वो इंजीनियर थे, उन्होंने 33 वर्ष की उम्र में पायलट की ट्रेनिंग ली और पायलट लाइसेंस लिया।
1: अच्छा।
0: उस वक्त तो वो डिजाइन भी करते थे और उसको उड़ाते भी थे। मतलब नॉट हार्ड टेस्टिंग जहाज, लेकिन वो पायलट थी तो उन्हें डिजाइन और मेंटेनेंस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। ऐसे ही अगर आप रुस्तम भी दमानिया का समय पढ़े, जो एक नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी में इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे, वो भी पायलट थे, वो अमेरिका में पायलट की ट्रेनिंग लेके आए और भारत में आके जब जहाज उड़ते थे तो वो डिजाइन के साथ साथ अपने इंजीनियर्स को बताते थे कि ये जहाज कैसे डिजाइन होना चाहिए, कैसे भारतीय पायलट्स की आवश्यकता है। तो हमारे बहुत एक रिच हिस्ट्री रही है,
1: बिल्कुल,
0: सिर्फ वॉर फाइटिंग में नहीं बल्कि अपने देश को सशक्त बनाने में, एरोनॉटिक्स कैपेबिलिटी बनाने में।
1: और वो मेड इन इंडिया, मेड इन अपने ही लोगों ने बनाया,
0: मेरे मेड इन इंडिया में। अगर आप सुरंजन दास की बात करें, तो जब हम अपना फर्स्ट फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहे थे
1: जी,
0: तो वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, तो जर्मन साइंटिस्ट बीच में चले गए।
1: अच्छा।
0: तो सुरंजन दास ने उनका काम टेक ओवर किया, तो टेस्ट पायलट होते हुए उन्होंने डिजाइन को अपने देश के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए
1: अच्छा।
0: उसको अगले लेवल पर ले जाने की प्रयत्न किया।
1: सर, जिस तरीके से आपसे हम बात कर रहे हैं, इतनी सारी जानकारी हमें मिल रही है, और जैसे आपने बताया कि पहला एयरक्राफ्ट हमारा कब बन गया था, ये हमारे लिए बड़ी ही फख्र की बात है, गर्व की बात है, और ये नॉलेज में हमारी एक तरह से बढ़ोतरी हो रही है। सर, यहाँ पर मैं आगे बढ़ते बढ़ते आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं और आपसे बहुत सारी बातें करूँ, लेकिन इससे पहले कुछ मैसेजेस जो आ चुके हैं मैं उनको ज़रूर आपको सुनाना चाहूँगा। हितेंद्र दास का असम से है मैसेज, गुड आफ्टरनून कह रहे हैं सर आपको। और उसके बाद ये मैसेज है, शाही सर जी और ग्रुप कैप्टन राजीव सर, आपको मेरा सलाम, आज रेडियो पर आपका इंटरव्यू सुन रहे हैं, बहुत गर्व हो रहा है, आज आप हम आप हो तभी हम चैन से रह सकते हैं, जय हिंद जय भारत। ये है सर चंपावत टनकपुर उत्तराखंड ग्राम गेंडा खाली नंबर एक अनिल कुमार का सर ये मैसेज आपके लिए।
0: देखिए, हम हमारे चीफ ने बोला है कि नागरिकों का सहयोग हमारी ताकत है, तो आप हमारी ताकत हैं, हमारे जो अभी करंट जनरेशन के योद्धा हैं, वायु योद्धा हैं, तो आप उनकी ताकत हैं, आप ऐसे ही उनका सहयोग देते रहें, अश्योर्ड रहिए कि वो आपकी वायु की पूरी सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे, और हमें भी उन पर गर्व है।
1: बिल्कुल। और यह सर यशवंत आठमुठे धाराशिव महाराष्ट्र से, नमस्कार, जय हिंद सर, जय भारत कह रहे हैं आपसे। और ये मैसेज है मंसूर अली खान, आप सबको नमस्कार, वायुसेना को सलाम कर रहे हैं ये सर। और ये एक बहुत बड़ी कविता लिखकर भेजी है, ये बहुत बड़ी कविता है यश शिंदे की मुंबई से, और मुझे लगता है कि परिंदों से कह दो कि हम अपनी उड़ान और ऊंची कर लें, क्योंकि आसमान में अब बाजों का पहरा है, ये भारतीय वायुसेना के जाबाज सिपाही हैं, इनका हौसला समंदर से भी गहरा है, जिनकी हुकूमत से कांपता नीले अंबर का सीना है, देश के उन रखवालों का शान से ही तो जीना है, जिन्होंने सीखा सिर्फ वतन के लिए मरना और जीना है, नीले गगन की ओट में रहकर जो फर्ज निभाते हैं, वो तूफानों के रुख को भी मोड़ कर आते हैं, भारतीय वायुसेना के उन वीर सपूतों को सलाम जो आसमान में भारत का मान बढ़ाते हैं, वायुसेना के शेरों को शत शत नमन, हमारा वायुसेना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई सर आपके लिए। ये यश शिंदे मुंबई से मैसेज कर रहे हैं,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और सर ये एम प्राउड ऑफ ऑल यू सर, लव लाइफ IAF, जय हिंद दीपांशु भटिंडा से, एयर फोर्स इज द बेस्टेस्ट इन द यूनिवर्स, जय हिंद दीपांशु का सर ये मैसेज है। और ये मैसेज है रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र डहाणु वार्ड वन से, जय हिंद सर जी आपको ये कह रहे हैं। और ये है सर Jai Hind to today's respected guest, sir, and good afternoon, RJ, sir. Thank you. My heartiest love and respect to all our beloved Indian Army for the selfless service and Indian Air Force towards the nation. I bow my head to them, myself, Shankar.

0: कर लोड फ्रॉम ककरोला द्वारका सेक्टर 15 सर दिल्ली से कर रहे हैं मैसेज, भारत माता की जय, जय वंदे मातरम। और ये सारे मैसेजेस लगातार हमारे पास सर आ रहे हैं, बीच बीच में कोशिश करेंगे इनको लेने की। लेकिन सर मैं आगे बढ़ूं, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, आपने अपने करियर के दौरान बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे, क्योंकि आपका काम ही ऊंचाई पर जाना और फिर नीचे आना, तो उन उतार चढ़ाव में कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको आज भी याद तो आता हो लेकिन आपको डराता भी हो, आप शहर भी जाते हो, कुछ ऐसा?
1: नहीं देखिए, मेरे एक सीनियर कहते थे कि डर लगता है। मैंने कहा यस सर। कहते फिर तुम जियोगे।
0: अरे वाह,
1: डरना चाहिए लेकिन उस डर को ओवरकम करना भी आना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: अगर आप डर को नहीं ओवरकम कर पाते तो हम उड़ नहीं पाते।
0: अगर हम, डर भी जरूरी है।
1: हाँ, क्योंकि वो सैनिटी रखता है आपको सोचने की, ठीक दिशा, ठीक डिसीजन लेने की एक ज्ञान देता है, आपको बार बार याद कराता है कि किसी भी चीज़ को ग्रांटेड नहीं लेना।
0: Exactly.
1: तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस थी, हम जहाँ पर ऐसी सिचुएशंस में थे कि लगता नहीं था कि निकल पाएंगे
0: जी।
1: लेकिन उस वक्त अपने माइंड को कूल रखना और ठीक डिसीजन लेना, अपनी टीम, देखिए भारतीय वायुसेना में मैं हेलीकॉप्टर पायलट हूँ, दो पायलट होते थे, हमारे टेक्नीशियंस होते थे, तो एक टीम थी हमारा। मैं तो कहता हूँ जो हमारा एनसी जो सुबह खाना लाता था या पानी लाता था वो भी हमारी टीम का मेंबर था।
0: है, बिल्कुल।
1: और हमारी वाइफ जो सुबह पता नहीं 4 बजे बेचारे उठती थी या कब उठती थी, हमारे पूरे जो वायुसेना की टीम थी उनकी फैमिली, उनके जो कमिटमेंट, उनके जो सेक्रीफाइस है, तो बहुत सारी सिचुएशंस होती थी। हमारा दिल करता था कई बार कि हम घर जाएं लेकिन नहीं जा पाते थे। तो मुझे लगता है ये एक नहीं, बहुत सारी परेशानियां थी लेकिन वो अपनी देश की ड्यूटी से बड़ी नहीं थी।
0: नहीं थी, बेशक सर। यही डेडिकेशन जो हम देखते हैं अपने आर्म्ड फोर्सेस के, हमारे सोल्जर्स में, हमारे सिपाही, हमारे सैनिकों में, वो जज्बा, वो देशभक्ति से, मतलब देशवासियों को भी पूरा देशभक्ति से भर देता है वो। सर एक इंसिडेंट आपका
1: जी,
0: मैं आपसे उस पर पूछना चाहूंगा। अगस्त 1998
1: जी,
0: 18,000 फीट की ऊंचाई पर आप फ्लाई कर रहे हैं
1: जी, जी।
0: सर ऐसा क्या हुआ कि उस दिन जिंदगी बदल गई और आज आप हमारे सामने बैठे हैं?
1: जी, वो एक ऐसा दिन था जिसमें बहुत अच्छा सा मौसम था
0: जी,
1: और हम नॉर्मल, देखिए मैं नॉर्थ सेक्टर में था
0: जी,
1: ग्लेशियर मतलब ले सेक्टर में अगर आप बोलिए, और हम जो है सब सेक्टर नॉर्थ में दौलत बेग ओल्डी में गए थे।
0: अच्छा।
1: वहाँ पर हमने अपना जो भी अपना ऑपरेशन था किया
0: जी,
1: वापस आ रहे थे और मेरे साथ मेरे को पायलट थे फ्लाइंग ऑफिसर नितिन वेल्डे, हम दोनों फ्लाइंग करके अपना ऑपरेशन करके वापस आ रहे थे, हमारे साथ एक पैसेंजर भी थे। और जब हम वापस आ रहे थे तो एक प्लेस है सासेरला, सासेरला मतलब पास कहते हैं, तो उसको हम जैसे ही क्रॉस किया तो हमारे इंजन फेलियर हो गया। और देखिए हेलीकॉप्टर में जब इंजन फेल होता है तो ये ग्लाइड नहीं करता, नीचे जाता बहुत तेजी से।
0: ओके।
1: तो जब बहुत तेजी से नीचे जाता है तो मैं कहूंगा ये मेरे को पायलट की सूझबूझ थी कि मैं जहाज उड़ा रहा था और वो देख के मुझे बता रहा था कि किस तरफ जाना है।
0: अच्छा।
1: और देखिए
0: आपका उनका कोऑर्डिनेशन था,
1: कोऑर्डिनेशन था। और देखिए हम जो पायलट हैं हमें इंजन की आवाज की आदत है, उस दिन साइलेंस थी।
0: अच्छा।
1: तो वो बहुत डेडली साइलेंस थी, शायद दिमाग में बहुत सारी चीजें घूमी होंगी जो मैं अभी याद नहीं कर पाता हूँ, बट उस वक्त मुझे याद था कि काफी कुछ दिमाग से निकला था। कुछ सेकेंड्स का ये जर्नी थी, हमारा जहाज बहुत तेजी से जमीन की तरफ जा रहा था, 18,000 से करीब, जब मैं, मुझे लगा कि मैं जमीन पे जो नीचे जो 11,000 फुट पे थी
0: जी
1: वहां नहीं पहुंच पाऊंगा, तो मैंने कोपायलट से बताया कि लैंडिंग की जगह बताओ, तो उन्होंने मुझे बोला दाहिनी तरफ को एक जगह थी, मैं जिस तरफ जा रहा था, तो उन्होंने जैसे ही बोला मैंने उस तरफ देखा, एक ही पॉइंट था, आगे पहाड़ था।
0: अच्छा।
1: तो हमने फ्लेयर किया, और हेलीकॉप्टर में क्या होता है आपके पास एक ही चांस होता है जब आप फ्लेयर करते हो, आप जहाज में पीछे करते हो, नीचे से जो हवा आ रही होती है
0: जी,
1: जैसे ही आप डिस्क को टिल्ट करते हो
0: जी,
1: तो आपके पास एक ही मौका होता है, या तो आप बच गए या नहीं बचे।
0: अच्छा, दूसरा कोई चांस नहीं।
1: तो वो जो था, आई थिंक बेस्ट ऑटो रोटेशन लैंडिंग मैंने अपनी लाइफ की थी, जिसने बचाया। मेरे जो टीचर्स थे, मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे
0: जी,
1: जिन्होंने हमें डांट डांट के प्रिसीजन सिखाया, वो इंजन आरपीएम मेंटेन करना सिखाया और फोकस करना सिखाया, और जो ले में जो मेरे जूनियर और मेरे पीयर्स और सीनियर्स थे

0: उन्होंने बताया कि कैसे आपको आरपीएम में हैंडल करना है। तो मुझे लगता है वो पूरी ज्ञान जो था वो एक सेकंड में जो हुआ,
1: एक सेकंड में
0: उसने हमारी लाइफ को बजा दिया। आज मेरी जो है ये दूसरी लाइफ है, मेरा जो को पायलट है, मेरे जो बाकी मित्र हैं जिन्होंने हमें रिकवर किया, हम दो जहाज थे, दूसरे जहाज ने आगे हमें रिकवर किया। तो मुझे लगता है वो प्रोफेशनलिज्म मेरे सीनियर्स, मेरे पीयर्स, मेरे बाकी सारे वायुसेना के जो थे उसका एक निचोड़ था, और शायद जो अच्छी काम था या भगवान की मर्जी थी कि मुझे एक सेकंड लाइफ मिलनी है। अभी जमीन के से बहुत दूर होते हुए भी पहाड़ के बीच में 14,200 फीट पे जहाज को रिकवर किया, और जहाज टूट गया लेकिन हम में से किसी को चोट भी नहीं आई। हम तीनों निकले, क्रैश होके टूट गया, फिर हम तीनों बाहर निकले, हमें दूसरे जहाज ने रिकवर किया। तो शायद आई थिंक हमारी जो वायुसेना का प्रोफेशनलिज्म है कि कैसे आप सिचुएशन को डील करते हो, उसको कोई भी सीरियस, मतलब हम बहुत सीरियसली लेते हैं
1: बिल्कुल।
0: और मेरे जो इंस्ट्रक्टर्स ने जिस तरीके से सिखाया, जितनी प्रैक्टिस कराई, एक एवरेज बंदे को भी एक हाईली प्रोफेशनल बना देते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय वायुसेना की मैं जितनी तारीफ करूं कि एक आम लड़के को उसको एक प्रोफेशनल पायलट बनाया। और फिर ये जो है, मैं 1998 की बात है, उसके बाद 2012-13 तक मैं 2008-9-7-8 तक रेगुलर फ्लाइंग की।
1: अच्छा।
0: तो उतनी देर उसके बावजूद चलते रहना, उसके बाद कितने लोगों ने जो सिखाया होगा, और लगभग मैंने 4,700 घंटे उड़ाए। तो मुझे लगता है कि भारतीय वायुसेना के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।
1: बिल्कुल सर। तो ये अपने आप में बहुत ही यादगार और बहुत ही कमाल की बात है कि जो आपने इंस्टीट्यूट बताया कि वो सर्वाइवल जो था वो लाइफ चेंजिंग रहा। तो इसलिए सर हम आपकी इस बात के लिए तारीफ करते हैं कि आप उस मौके पर किस तरीके से आपने उसको हैंडल किया, उस सिचुएशन को आपने संभाला और सारे लोग बच गए, और आज आप साक्षात हमारे साथ हैं और हम इस पर बात कर रहे हैं। तो हम ये कहें कि ये फ्लाइंग जो है वो अपने आप में बहुत एक्साइटिंग भी है लेकिन बहुत खतरनाक भी है। तो वो जो सर है ना कि हीर आसमानी, तो जब आसमान में उड़ते हैं तो फिर बस कुछ नजर नहीं आता, हम आसमान में होते हैं।
0: मेरे ख्याल खतरनाक तो नहीं कहूंगा, मुझे लगता है कि अगर आप जब प्रोफेशनलिज्म आता है तो खतरनाक नहीं होता
1: जी।
0: आप उसको कैसे सिक्योर बनाते हैं
1: बिल्कुल, और साथ में एंजॉय भी करते हैं।
0: एंजॉय तो करना, आई थिंक प्रोफेशनलिज्म में आप पूरा फोकस्ड होते हैं।
1: फोकस्ड होते हैं
0: जी।
1: हमारे साथ हैं ग्रुप कैप्टन डॉक्टर आर के नारंग। आप सुन रहे हैं आज का एयरफोर्स डे स्पेशल। मेरे साथ, मेरा नाम है शाहिद और ये है 102.6 एफएम नंबर 1 रेडियो, आपका अपना रेनबो दिल से दिल तक।

0: 102.6 देश का नंबर वन रेडियो, आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ। आज है एयरफोर्स डे और आज के हमारे खास मेहमान एयरफोर्स डे पर ग्रुप कैप्टन डॉक्टर राजीव कुमार नारंग। सर, हम अगर बात करें ड्रोन टेक्नोलॉजी की, ड्रोन्स जो है आजकल जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसका बड़ा ही इंटीग्रल पार्ट बन चुका है, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? भारत कहाँ है? हम अपने ड्रोन्स भी डेवलप कर रहे हैं आजकल, हम टेक में भी काफ़ी आगे जा चुके हैं, आप किस तरह से उसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे?
1: देखिए, ड्रोन्स भारत नहीं पूरे विश्व में
0: जी
1: वॉर फाइटिंग को भी बदल रहा है और आम नागरिक के लिए भी बहुत बड़ा चेंज ला रहा है।
0: जी,
1: भारतीय प्रधानमंत्री ने बोला है कि भारत को हम एक ग्लोबल ड्रोन हब देखना चाहते हैं 2030 में। और मिलिट्री में अगर आप देखें, जितनी भी वॉर्स हुई हैं, आर्मेनिया अज़रबैजान वॉर हुई, अगर आर्मेनिया ने तैयारी नहीं की तो वो वॉर फटाफट लूज कर गया, तो इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि ड्रोन अभी मैन्ड एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने की सिचुएशन में नहीं है,
0: लेकिन सर जिस तरीके से हम देख रहे हैं आजकल, तो ड्रोन से ही सब अब तो
1: ड्रोन एक सिग्निफिकेंट पार्ट बनने जा रहा है। और इसमें जो है भारतीय जो स्टार्टअप्स हैं, इनोवेटर्स हैं, और इवन पब्लिक सेक्टर एंटिटीज जैसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट जो है मिलिट्री ड्रोन्स बना रही हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी बैंगलोर है वो बना रहे हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है जिसका एक कॉम्बैट एरियल टीमिंग सिस्टम प्रोग्राम है, घातक प्रोग्राम है हमारा जो है, आर्चर प्रोग्राम है, और जो स्टार्टअप्स जो हैं वो जो है हमारे एग्रीकल्चर के लिए बना रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: एक स्वामित्व स्कीम है, ड्रोन दीदी स्कीम है, तो भारत में काफी इनिशिएटिव्स हो रहे हैं। लेकिन यहां मैं कॉशन देना चाहूंगा, अगर आप यूक्रेन वॉर में देखें जो क्रिटिकल ड्रोन इंपोर्टेड कंपोनेंट थे उसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ यूक्रेनियन की डेथ हो गई, वो चाइनीज डीजीआई ड्रोन यूज कर रहे थे और उनके वाइस प्रीमियर ने पब्लिक में जाके एक्स पे उस पोस्ट को डाला। सिमिलरली अगर आप देखें पेजर और वॉकी टॉकी में जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं वो 3,000 हिजबुल्ला लड़ाके इंजर्ड हुए उसकी वजह से और 40 से 50 मारे गए। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो थे वल्नरेबल थे। तो मुझे लगता है ड्रोन और काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी जब हम आत्मनिर्भरता जो कर रहे हैं तो हमें याद रखना पड़ेगा कि क्रिटिकल कंपोनेंट इंडिया में बने, और हमारे जो इंडिजिनस प्रोग्राम है जैसे घातक है, आर्चर एनजी है, या आर्चर एनजी जो है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, हमारी डीआरडीओ की लेबोरेटरी एडीई बना रही है, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बना रही है कैट्स प्रोग्राम जिसे कॉम्बैट एरियल टीमिंग सिस्टम बना रही है, हमारे स्टार्टअप्स बना रहे हैं लॉयटरिंग ड्रोन्स बना रहे हैं, एक हमारी प्राइवेट कंपनी है जो स्वॉर्म ड्रोन बना रही है। तो भारत में इनोवेशन है, हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि क्रिटिकल कंपोनेंट वल्नरेबल ना हो, इंपोर्टेड इतने ना हो कि भारत की वल्नरेबिलिटी बन जाए,
0: हम सेफ सिक्योर भी रहे, प्लस ये कि हमारी टेक्नोलॉजी
1: आत्मनिर्भर बने,
0: मेड इन इंडिया हो सारे वो जो कंपोनेंट्स हमको इंपोर्ट करने पड़ते हैं वो हम खुद बनाए, ताकि हम हर तरह से टेक्निकली भी एडवांसमेंट पर जाएं, प्लस सेफ और सिक्योर भी।
1: और हमारा जो है ना, जो जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
0: जी,
1: जो कोर डिजाइन है वो हमारा
0: अपना हो,
1: हमारे जो वल्नरेबिलिटीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है जिसकी वजह से ये अटैक हुए वो सब भारतीय बने, धीरे धीरे एक सिस्टमेटिक अप्रोच से करें, तो मुझे लगता है भारत में बहुत पोटेंशियल है। मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहना चाहूंगा कि भारतीय स्टार्टअप्स, हमारी प्राइवेट कंपनी, इवन हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनी में बहुत प्रॉमिस है। हमें प्राइवेट वर्सेस पब्लिक नहीं करना, प्राइवेट वर्सेस यू नो लार्ज कंपनी वर्सेस स्टार्टअप नहीं करना, हम सबको एक बनना है, एक मुट्ठी बनना है, पांच उंगलियां एक एक उंगलियां से ज्यादा स्ट्रांग बनेंगी। और अगर हमने स्टार्टअप्स, एकेडमिया, पब्लिक सेक्टर, डीआरडीओ, प्राइवेट इंडस्ट्री, स्टार्टअप, एमएसएमई, ये सब इकट्ठे आ गए तो हम भारत को एक विश्व पटल पर ड्रोन टेक्नोलॉजी पर स्थापित कर पाए।
0: बिल्कुल सर, आपने एक किताब भी लिखी है, India's Quest for UAVs and Challenges, तो वो इसी पर ही फोकस्ड है वो कि UAVs जो हैं और ये ड्रोन्स जो हैं उनकी टेक्नोलॉजी को, और उस पर किस तरीके की सर इसमें जो कंटेंट, जो किताब आपने लिखी?
1: देखिए, ये किताब 2014 में मैं सेंटर फॉर एयरपावर स्टडीज में गया था।
0: अच्छा।
1: जब मैं वहाँ रिसर्च करने गया तो मुझे गाइड किया गया
0: जी।
1: हमारे वहाँ डायरेक्टर जनरल एयर मार्शल पटनी और बाकी जो टीम है, बोला गया कि मुझे ड्रोन्स पे रिसर्च करनी
0: जी, आपने ऑलरेडी एविएशन ड्रोन्स काउंटर ड्रोन सिस्टम सब पर रिसर्च की है आपने
1: जी
0: जी।
1: तो मुझे लगता है कि ये भारतीय वायुसेना ने और हमारे जो सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज जिसको आजकल सेंटर फॉर एरोस्पेस पावर
0: जी
1: एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज कहते हैं कैप्स, वहाँ पर मेरे जो लीडर्स थे और जो मेरे सीनियर्स थे और मेरे जो कलीग्स थे उनमें मेरे ग्रुप कैप्टन विवेक कपूर हैं, हमारे एयर मार्शल नौहार हैं, एयर मार्शल पटनी हैं, एवीएम बहुत सारे मेरे जो सीनियर्स हैं जिन्होंने मुझे गाइड किया। और मैं उसमें मुझे याद है कई स्कॉलर्स होते थे जो नॉर्मल पीएचडी या एमएससी कर रहे थे और कैप्स में रिसर्च कर रहे होते थे, वो हमें गाइड करते थे कि रिसर्च कैसे की जाती है।
0: आप खुद भी सर एक हेलीकॉप्टर पायलट इंडियन एयरफोर्स के और फिर रिसर्च में आप आए, तो ये भी बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन था
1: जी। मेरे मुझे इसमें मैं कहना चाहूंगा ग्रुप कैप्टन विवेक कपूर ने मुझे नज किया कि भाई आप पीएचडी कीजिए।
0: ओके,
1: तो ये मुझे लगता है कि वो मेरे मेंटर और गाइड रहे, उन्होंने जैसे उन्होंने सिखाया जैसे उन्होंने गाइड किया अभी भी मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। फिर मैंने जेएनयू में से जब पीएचडी की तो मेरे जो प्रोफेसर थे मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ, मेरे जो कोलीग्स थे जिन्होंने मेरे साथ पीएचडी की उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, कैप्स में बहुत कुछ सीखा। और अब जो है मैं आईडीएसएम में हूँ, एमपी आईडीएसएम मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, वहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं एम्बेसडर चुनाव और बहुत सारे मेरे जो सीनियर्स और कलीग्स
0: जी।
1: मुझे लगता है मेरे लिए एक बहुत ही सीखने का समय है और मुझे लगता है कि ये ज्ञान जो है भारत के फ्यूचर, भारत को एरोस्पेस पावर बनाने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत को एक सशक्त और विकसित भारत बनाने के कंट्रीब्यूट करे, तब मैं सोचूंगा कि मैंने अपना एक कुछ कंट्रीब्यूट किया।
0: बिल्कुल सर, इसी बात पर मैं भी ये भी जानना चाहूंगा अभी कि अभी जिस तरीके से आपने सब चीज़ें बताई आत्मनिर्भर भारत और हम मेड इन इंडिया के थ्रू जिस तरीके से हम अपने आप चीज़ों को बना रहे हैं और अपने आप को कैपेबल बना रहे हैं, सेल्फ रिलायंस बना रहे हैं, तो 2047 में 2047 में आप क्या मतलब देखना चाहते हैं, किस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हैं? और ख़ास तौर सर इसके साथ ये भी कि जो इंडियन एयरफोर्स की एरोस्पेस पावर बनाने के लिए जो एक विजन होना चाहिए वो किस तरीके से आप देखते हैं?
1: देखिए भारतीय वायुसेना ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, उन्होंने अभी एक डायरेक्टरेट ऑफ रिमोट बनाया जो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सेट है, मेहर बाबा सॉन्ग कंपटीशन है वो भी एक प्रोग्रेसिव सेट है
0: जी।
1: लेकिन एक पार्ट है जो मुझे लगता है भारतीय वायुसेना एक फैसिलिटेटर है, एनेबलर है,
0: ठीक है,
1: जिसकी वजह से हम काफी कुछ कर पाए हैं
0: जी।
1: लेकिन मैं चाहता हूं कि भारतीय वायुसेना पार्टनर बने डिजाइन डेवलपमेंट में। देखिए क्या है, हमारी इंडियन नेवी में शिप बिल्डिंग डिजाइन ब्यूरो है
0: जी,
1: तो उससे हमारा शिप बिल्डिंग का इंपोर्ट बहुत कम हो गया है और उसका सक्सेस रेट बहुत बढ़ गया है। तो अगर मुझे भारतीय वायुसेना एक एरोनॉटिक एरोस्पेस डिजाइन बोर्ड या एरोस्पेस रिसर्च लेबोरेटरी और एरोस्पेस रिसर्च वर्टिकल बनाएगा तो हमारा जो एरोस्पेस प्रोजेक्ट है उसमें सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: और मुझे लगता है कि मैं चाहूंगा भारत जो है आत्मनिर्भर सशक्त एरोस्पेस फोर्स बने, भारतीय वायुसेना जो है आत्मनिर्भर सशक्त एरोस्पेस फोर्स बने 2047 तक
0: जी।
1: हम आत्मनिर्भर हो एरो इंजन में, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में, मैंड अनमैंड फाइटर्स में, स्पेस टेक्नोलॉजी में एंड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये जो पांच वर्टिकल हैं ये भारत को, भारतीय वायुसेना को सशक्त रियली बना सकते हैं और जो एरोस्पेस डिजाइन ब्यूरो है उसकी कमियों को सक्सेसफुल होगा। हमारे जितने भी इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स हैं हमें उसको कैसे सक्सेसफुल बनाना है उसमें थ्री प्रॉन्ग्ड अप्रोच करें, टेक्निकल रिव्यू कीजिए, रीओरिएंटेट कीजिए, कोर्स करेक्ट कीजिए और उनको सक्सेसफुल बनाइए। ये मेरा एक विजन है, मेरा सपना है, ताकि मैं अपने फाइटर्स भारत में बने, भारत में डिजाइन किए फाइटर्स, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और यूएवी उड़ाऊं और उन्हीं एयर डिफेंस सिस्टम से देश की रक्षा करूं, उन्हें एक्सपोर्ट करूं और भारत को विश्व पटल पर डिफेंस एंड एरोनॉटिक्स का एक

0: एक्सपोर्टर बना पाऊं और भारतीय अर्थव्यवस्था में
1: जी
0: एक कॉन्ट्रीब्यूट कर
1: कॉन्ट्रीब्यूशन भी हो। बिल्कुल सर, मैसेजेस हमारे पास लगातार आ रहे हैं, मैं आपको कुछ मैसेज यहाँ पर पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। ये मैसेज है राजेश भल्ला, एडवोकेट है कंकर खेड़ा मेरठ से। ये कहते हैं सर, डर से डरना नहीं है, डर तो सूझबूझ भी देता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इनसे मानता हूं कि वही मेरे सीनियर की बात याद आई कि भाई डर से ही आपको डर को पॉजिटिवली यूज कीजिए,
1: वही डर आपके लिए ताकत बनता है,
0: ताकत बनता है अगर आप उसको ठीक से इस्तेमाल
1: करें जी। और ये मैसेज का इन्होंने रिस्पॉन्ड किया, एयरफोर्स इज द बेस्टेस्ट इन द यूनिवर्स, दीपांशु भटिंडा से। इसके अलावा ये मैसेज है सर, भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर आप सबको विनम्र अभिवादन, आज के मेहमान कैप्टन सर से बातचीत सुनना अच्छा लग रहा है, मानसी महास्कर अंधेरी मुंबई। और इसके अलावा ये हैं, वायुसेना दिवस की बहुत बहुत बधाई शबनम बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से, धन्यवाद। और ये हैं, काफी लंबा मैसेज है, मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ। क्वीन लक्ष्मीबाई मेट हर एंड वायल सेविंग हर झांसी एट सिंध भूमि लाइक अदर्स तांतीय टोपी बट द नेम रॉयल ओनली दोज गेट सीन वंस ड्यूरिंग कमेरा। और आपको सर ये धन्यवाद और नमस्कार कर रहे हैं आज के इस खास दिन पर जो है इंडियन एयरफोर्स डे। और सर अब समय हमारे पास कम बचता है, हम यहाँ आपसे ये जानना चाहेंगे, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस सर, आपने वायु सेना मेडल से भी आपको सम्मानित किया गया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर किस उपलक्ष्य में और आपकी सर्विसेज के लिए।
0: देखिए वायु सेना मेडल प्रोफेशनलिज्म के लिए दिया गया था, शायद इसमें जो मेरा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हुआ था
1: जी,
0: हम तीनों लाइफ बची हमारी
1: बिल्कुल,
0: और मुझे लगता है कि वो वायुसेना मेडल मुझे नहीं मेरे इंस्ट्रक्टर्स को दे जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो सिखाया ना होता
1: जी।
0: क्योंकि कई लोग हैं जो सर्वाइव नहीं किए हैं ऐसे एक्सीडेंट्स में। और देखिए मैं बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पर उड़ा रहा था, 18,000 फीट पे, जहाँ पर बहुत ही कम जो है डेंसिटी होती है, तो मुझे लगता है जो मेरे सीनियर्स या जो मेरे कलीग्स थे ले में क्या होता है कि अगर आप जूनियर पायलट भी हैं, अगर आप कैप्टन हैं, तो अगर आपका वो क्वालिफिकेशन है तो आप कैप्टन है।
1: ओके,
0: तो मैं उस वक्त को पायलट उस सॉर्टी से पहले को पायलट था, सिर्फ इस सॉर्टी के लिए कैप्टन था, तो मेरे जो जूनियर थे लेकिन कैप्टन थे तो उनसे जो सीखा, मुझे लगता है कि भारतीय वायुसेना की प्रोफेशनलिज्म को मैं देना चाहूंगा और अपने सीनियर्स को देना चाहूंगा।
1: सर इसी बात पर मैं आगे आपसे पूछूं कि आपका जो करियर रहा इंडियन एयरफोर्स में, तो आपकी लाइफ का क्या एक्सपीरियंस था, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा?
0: देखिए वायुसेना एक आम स्कूल के बच्चे को एक प्रोफेशनल ऑफिसर बनाता है, उसे लीडर बनाता है, उसे रिस्पॉन्सिबल बनाता है
1: जी,
0: उसे अनफोर्सीन सिचुएशंस में डील करना सिखाता है, उन्हें अपने सबॉर्डिनेट्स को देखना सिखाता है, उन्हें अपने फैमिली अपने को पीछे रख के अपने देश को आगे रखना अपने सबॉर्डिनेट्स को आगे रखना चाहता है, उसे कैसे वायुसेना को अगला बनाना है वो सोचना सिखाता है, और कैसे अनफोर्सीन सिचुएशंस हो उसको संभालना है, तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है।
1: बिल्कुल,
0: मुझे लगता है कि आज मैं जो बन पाया हूँ ये भारतीय वायुसेना की वजह से कर बन पाया हूँ। एक स्कूल से निकला और कॉलेज से निकला हुआ स्टूडेंट जब उसमें आता है, कोई इंजीनियर बनता है, चाहे कोई पायलट बनता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर बनता है
1: जी,
0: वो सब
1: जैसे आपने अपने स्टूडेंट लाइफ का किस तरीके से आपने वो मोटिवेशन, आप यूथ को आज के जो नेक्स्ट जो हमारा फ्यूचर पायलट होगा और यूथ होगा उसको कैसे आप क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे?
0: मैं चाहूँगा कि जो भारतीय वायुसेना में ज्वाइन करना चाहते हैं, ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है
1: जी,
0: ये आपको एक रिस्पेक्ट दिलवाता है, आप भारत की एक्चुअली सेवा कर पाते हैं, आप अपने आप को बहुत अच्छा कैपेबल बनाइए, आप हमारे लिए टेक्नोलॉजी बनाइए, आप भारत को कैपेबल बना सकते हैं, मेडिकल के एडमिनिस्ट्रेटिव इंजीनियर पायलट बहुत तरीकों से आप बन
1: सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला और इतनी अच्छी इतनी काम की और इतनी कीमती बातें आपने आज हमसे की, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने के लिए आज के एयरफोर्स डे स्पेशल पर। आप हमारे आज के खास मेहमान ग्रुप कैप्टन डॉक्टर राजीव कुमार नारंग, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: Aswani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: पर यह है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर सुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने मोबाइल पर न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह कार्यक्रम इस वक्त सुन सकते हैं। और यदि आपने ये ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो कृपया इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे कार्यक्रमों का आनंद लीजिए। शाम के 5:03 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लव यू जिंदगी। सभी श्रोताओं को माया का प्यार भरा नमस्कार।

आज एक बहुत ही दुखद समाचार सुबह सुबह प्राप्त हुआ। ज्येष्ठ दिग्गज कलाकार नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे। सुनने को तो बड़ी विचित्र सी खबर लगी, क्योंकि इन दिनों मन में होता है ना कि उड़ी उड़ाई खबर भी हो सकती है, ये झूठा हो सकता है और ये होना ही चाहिए। लेकिन नहीं, नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसा कलाकार जो अपने अभिनय या फिर हम कहें कि शानदार अभिनय की वजह से हमारे दिल दिमाग में न जाने कितने ही वर्षों से राज कर रहे हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, पद्मश्री और ऐसे अनेक पुरस्कारों से उन्हें सवारा गया, नवाजा गया।

और मराठी में तो उन्हें नटसम्राट कहा गया है। उनके अभिनय की जो श्रेणियां हैं इतनी विभिन्न हैं, फिर चाहे वो खलनायक हो, चाहे वो कॉमेडियन हो, फिर चाहे एक संवेदनशील बाप की भूमिका हो, सभी भूमिकाओं में वो इतने जीवंत नायक हमें नजर आए कि क्या बताएं। एफएम रेनबो के परिवार से

तपती चिलचिलाती धूप में ये शाम का वक्त थोड़ा सा हमारे लिए एक सूदिंग वाला जो एक एहसास है वो लेकर आता है। वैसे धूप छांव बारिश ठंड, समय का ये जो पहिया है ये चलता रहता है, ये किसी के लिए रुकता नहीं है। और हम इस पहिए के साथ इस तरह से चिपक कर न जाने कितनी ही सदियों से चलते रहते हैं। ऐसे ही जिंदगी शायद इसी का ही तो नाम है। वैसे जिंदगी को बहुत सारे नामों से हर कोई नवाजता है, पुकारता है, अपने अंदर एक एहसास लेकर चलता है कि हाँ इसे जिंदगी कहते हैं और हमें इसी के साथ मिलजुल कर हिलजुल कर चलना है जब तक ये सांसें हैं। जब सांस रुक जाती है तो जिंदगी के साथ हमारा जो ये सफ़र है वहीं पर रुक जाता है। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सांसों के रुकने के बाद भी अविरत रूप से जिंदगी के साथ हमारा जो ये सफ़र है अव्याहत रूप से सनातन रूप से चलता आ रहा है। भले ही हम उस सफ़र को इस वक्त जब हमारी सांसें चल रही होती हैं उस वक्त नहीं शब्द में बयां कर पाए, लेकिन है ये सफ़र यूं ही इसी तरह से चलता आ रहा है और इस सफ़र के हम यात्री हैं। और बहुत खूबसूरत अंदाज में ये सफ़र कैसे हम तय करें, यह हम में से हर किसी का सपना होता है, यत्न होता है।

कुछ गीत ऐसे होते हैं जो हमारे दिल में बस जाते हैं। चुपके से सुन इस पल की धुन, इस पल में जीवन सारा। बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन दिल में अगर आप बिल्कुल बारीकी से सुने तो दिल में घर कर जाती है।

समीर के बोल हैं, लेकिन अगर आप जैसे मैंने कहा कि गौर से सुनेंगे तो कभी कभी ऐसे लगता है कि कुछ छोटी छोटी बातें जैसे सागर में गागर में सागर होती है ना, उस प्रकार हमारे जीवन में घर कर जाती हैं। कुछ छोटे छोटे वाक्य होते हैं, कुछ छोटे छोटे किस्से होते हैं, छोटी छोटी कहानियां होते हैं, प्रसंग होते हैं, या फिर कोई व्यक्ति होती है जो हमें पूरे के पूरे जीवन का सार समझा जाती हैं। कुछ हमारे दिल में उससे पहले तक कुछ आइडियाज़ या फिर मिसकंसेप्शंस होते हैं, वो उस वाक्य के बाद, उस व्यक्ति के मिलने के बाद बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, जैसे किसी ने हमारा ब्रेन वॉश कर दिया हो। ये गीत भी कुछ ऐसे ही होते हैं, इनको सुनने से ऐसे लगता है कि जिंदगी के प्रति हमारा जो नज़रिया है वो किसी ने एकदम उसे धुला दिया हो और एकदम साफ सुथरा कर दिया हो। जिंदगी को देखने का हमारा जो नज़रिया है, जिस चश्मे से हम इसे देखते हैं, वो चश्मा, वो नज़रिया साफ हो जाता है तो पता चलता है कि जिंदगी कितनी सुंदर है। हाँ, पर उसके लिए आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होना या फिर ऐसे किसी का आना बहुत ज़रूरी होता है।

0: मन की बात
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात
0: रविवार सुबह 11 बजे
1: आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ।
0: इसके अतिरिक्त ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट पर सजीव प्रसारण FM कोड और उर्दू सर्विस की लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से
1: साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज DD भारती DD इंडिया और DD किसान चैनल पर भी किया जाएगा।
0: मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा।
1: मन की बात का अंग्रेजी भाषा में प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल 102.6 MHz और राजधानी चैनल मीडियम वेव 450.5 मीटर पर रात 8 बजे।
0: याद रखिएगा रविवार सुबह 11 बजे
1: मन की बात।
2: हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: दोस्तों, इंसान हमेशा अपने एक बनाए हुए वलय में जीता है। मैं, मेरा, मेरे अपने, मेरा ये, मेरा वो, बस इसी में अमूमन एक सामान्य इंसान की जिंदगी निकल जाती है। लेकिन ऐसा होते हुए भी वो खुद के लिए बहुत कम जीता है, अपने अपनों के लिए बहुत ज़्यादा। देखिए ना, सुबह उठते ही जो हमारी आपाधापी, जो भाग दौड़ शुरू होती है, रात के सोने तक बस अपने अपनों का ही विचार मन में होता है। बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है जिसका वहन करना होता है, और तब जाके हमारे दिल को चैन आता है। वैसे तो कहा जाता है इंसान बड़ा स्वार्थी है, लेकिन अपने अपनों के लिए सब कुछ त्याग कर देने में उसे जो सुख मिलता है, जिंदगी का असली मज़ा मिलता है, वो कहीं और नहीं मिलता। फिर ये जिम्मेदारियां, ये अपनेपन की भावना से किया गया त्याग, ये सब कुछ बड़ा मीठा लगता है। फिर उसके लिए कितनी ही हमें संवेदनाओं के साथ, वेदनाओं के साथ दोहात करना पड़े, हम बड़े आसानी से कर देते हैं।

अरिजीत सिंह के गाए हुए इस गीत के साथ ही लव यू जिंदगी कार्यक्रम बस यहीं तक ही। अब से कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे और तत्पश्चात आप सुनेंगे कार्यक्रम अंदाजे बयां 6:15 पर। सुनते रहें FM रेनबो

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: 107.1 MHz पर यह है आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। FM रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर सुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने मोबाइल पर न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह कार्यक्रम इस वक्त सुन सकते हैं। शाम के 6:15 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अंदाजे बयां। सभी श्रोताओं को माया का एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार।

गज़लों की शायरी की जब बात होती है तो ऐसे लगता है कि दुख वेदनाएं कितनी खूबसूरत होते हैं। हाँ, वैसे तो गज़लों को जो एक दूसरा पारिभाषिक शब्द दिया गया है वो ये है कि इसमें सारी दर्द से जुड़ी भावनाएं छिपी होती है। गज़लों का, शेरों का यही एक मुख्य अंदाज है। लेकिन ये जिस तरह से बयां होता है ऐसे लगता है कि कितने खूबसूरत हैं ये दर्द, ये वेदनाएं। कभी कभी ऐसे भी लगता है कि जब शायर अपने दिल का दर्द सुनाता है और उसके साथ जितनी पाक साफ तरीके से अपने आप को साबित करने की कोशिश करता है कि सचमुच ये दर्द उसे कितना संवारता है। और वैसे भी दर्द के इतने सारे पहलू भी तो होते हैं जिन्हें हम इन दर्द को सहते सहते नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो खूबसूरत शायरी करने वाले शायर होते हैं वो इन सारे छोटे छोटे पहलुओं से हमें अवगत करा ही लेते हैं।

दोस्तों 6:47 हो रहे हैं और FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं अंदाज़े बयां कार्यक्रम माया के साथ। कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, लेकिन आप तो जानते ही हैं हमारा अगला कार्यक्रम कौन सा होने वाला है। जी हाँ, अगला कार्यक्रम होगा 7:10 और वो कार्यक्रम होता है हम तुम। इस कार्यक्रम में आप अपनी फरमाइश सुनते हैं, तो चलिए इस फरमाइश को सुनने के लिए आपको कौन सी प्रोसीजर कंप्लीट करनी होती है हम आपको बताते हैं। हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज भेजें। मैसेज क्या भेजें? आप हमें मैसेज ये भेजें, आपको कौन सा गीत सुनना है, आपका पसंदीदा गीत कौन सा है, उस गीत के बोल, फिल्म का नाम, आपका नाम, हो सके तो आप कहाँ से हैं, ये सारी जानकारी हमें मैसेज कर दीजिए और हम आपकी फरमाइश गीत को सुना देंगे। तो चलिए नंबर अनाउंस कर देते हैं, 8657661071। नंबर एक बार फिर से दोहराए देते हैं, 8657661071। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें जल्दी से जल्दी मैसेज कीजिए और अपनी फरमाइश यहाँ पर दर्ज कीजिए, हम जल्दी से जल्दी आपकी फरमाइश पूरी करने की कोशिश करेंगे।

अशोक खोसला की गाई हुई इस गजल के साथ ही हमारा आज का अंदाज़े बयां कार्यक्रम बस यहीं तक ही। ठीक 7 बजे आप सुनेंगे मराठी बातमियां और तत्पश्चात 7:10 होगा कार्यक्रम हम तुम। सुनते रहें FM रेनबो।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 107.1 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर सुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने मोबाइल पर न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर यह कार्यक्रम इस वक्त सुन सकते हैं। शाम के 7:13 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम तुम। सभी श्रोताओं को माया का प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि आप जानते हैं, ये आपका पसंदीदा कार्यक्रम है क्योंकि इसमें आपकी फरमाइशें हम पूरी करते हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम बता देते हैं कि इस कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए आपको क्या करना होता है। हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज करें। मैसेज ये करना है कि आपको जो पसंदीदा आपका गीत है, जो सुनना है, उसके बोल, फिल्म का नाम, आपका नाम, आप कहाँ से हैं, ये सारी जानकारी हमें मैसेज करनी है व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर है 8657661071 8657661071। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है और इस पर हमें आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमने पिछले कार्यक्रम अंदाजे बयां कार्यक्रम में ही एक पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी और हमें बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। पंकज मोहर जी की पहली फरमाइश है अमरावती से, उन्होंने हमें मैसेज भेजा है। उन्हें खामोशी द म्यूजिकल फिल्म से अलका याग्निक और हरिहरन का गाया हुआ ये गीत सुनना है।
2: मामा पापा का वो नामुमकिन सपना जो सच हुआ है, मैं उनकी दिल की धड़कन हूँ जिसे वो सुन नहीं सकते। मैं उनकी पहचान हूँ, उनकी आवाज हूँ। हमारी छोटी सी दुनिया है सिर्फ तीनों की, लेकिन मैं आसमान को छूना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। आवाज और खामोशी टकराते गए, फिर भी सपने जिंदा हैं। है ना ये नामुमकिन सपना, लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना ना हो।

जतिन ललित के संगीत से सजा हुआ ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत अभी आपने सुना, और इसके बाद श्रीधरन जी की फरमाइश हम पूरी करते हैं। खून भरी मांग फिल्म से नितिन मुकेश, साधना सरगम और साथियों का गाया हुआ ये गीत आप सुनना चाहते हैं।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: दोस्तों हम तुम कार्यक्रम आप सुन रहे हैं जिसके अंतर्गत आपकी फरमाइशें हम पूरी कर रहे हैं। चलिए अगली फरमाइश की तरफ बढ़ते हैं। फिरोज सिंगापुरिया जी की अगली फरमाइश है, क्रांतिवीर फिल्म का जब से हम ये गाना आपको सुनना है कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

7:32 मिनट हो रहे हैं, हम तुम कार्यक्रम आप माया के साथ सुन रहे हैं। चलिए वक्त हो रहा है अगली फरमाइश का। शिवा, प्रेम, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि, दीपाली, गोप, ये सुनना चाहते हैं फरेब फिल्म से

ढेर सारी फरमाइशें हम तक पहुंच रही हैं, इसलिए अब और मैं कार्यक्रम में जो व्हाट्सएप नंबर है वो अनाउंस नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता जितनी फरमाइशें मुझ तक पहुंची है वो सारी ही मैं कार्यक्रम में पूरी कर पाऊंगी या नहीं। चलिए अगली जो फरमाइश है अरविंद कुलकर्णी जी ने भेजी है इसलकरण जी से। इश्क फिल्म से उदित नारायण, अभिजीत, सुदेश भोसले, पूर्णिमा और साथियों का गाया हुआ ये गीत आप सुनना चाहते हैं।

दोस्तों आज 8 अक्टूबर है और आज प्रसिद्ध गायिका उषा टिमोथी जी का जन्मदिन भी है और इसी उपलक्ष में बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने कहा है कि उनके कुछ गीत सुना दीजिए और उसी सिलसिले में संजय पाटिल और निवृत्ति क्षीरसागर उषा पाटिल जी ने हमें हिमालय की गोद में फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और उषा टिमोथी जी का गाया हुआ दो गाना सुनाने की फरमाइश की है। उषा टिमोथी जी की जो गायकी है वो अलग और हटके अंदाज की गायकी हमेशा से ही मानी जाती रही है और कल्याण जी आनंद जी ने

कि उन्हें ढूंढ निकाला था। वो जो भी ऑर्केस्ट्राज करते थे उनके संयोजक उषा टिमोथी जी के पिताजी हुआ करते थे। और वैसे तो बहुत सारे मुकेश किशोर कुमार मोहम्मद रफ़ी जैसे गायक उनकी जो उनका ऑर्केस्ट्रा था कल्याण जी आनंद जी का उसमें गाया करते थे, लेकिन कोई फीमेल सिंगर उस वक्त नहीं थी। तो उषा टिमोथी जी के पिताजी ने कहा कि मेरी बेटी बहुत अच्छा गाती है, एक बार सुन लीजिए। तो कल्याण जी आनंद जी ने कहा कि चलिए देख लेते हैं। तो छोटी सी उषा उन्होंने गाने सुनाए और उनको बहुत पसंद आया और तब से वो उनकी ऑर्केस्ट्राज में गाया करती थी। और उन्हें 1965 में बनी हिमालय की गोद में फिल्म में गाने का मौका मिला। हालांकि उनका ये कहना है उषा जी का कि 1962 में आई फिल्म में उन्हें पहली बार गाने का मौका मिला था और वही दुर्गा पूजा नाम की उनकी पहली फिल्म थी। लेकिन उन्हें जो रिकग्निशन मिली वो थी हिमालय की गोद में फिल्म से। तो चलिए इसी फिल्म का मोहम्मद रफ़ी और उषा टिमोथी साथियों का गाया हुआ ये गीत आपको सुनाते हैं।

निखिल पॉल का गाया हुआ बर्फी फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे और क्षितिज ने इसकी फरमाइश हम तक भेजी थी। अगली जो फरमाइश है वो है पीएस नावकर, निर्मला, विशाल, सोपान, नलेश्वर नगर, नरवेल, महाराष्ट्र से, और आप सुनना चाहते हैं काजल फिल्म का मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ ये गीत।

मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए इस गीत के साथ ही हमारा आज का हम तुम कार्यक्रम बस यहीं तक ही। ठीक 8 बजे आप सुनेंगे रॉक विद जॉक मिलेनिया के साथ, और माया को अब आप इजाज़त देंगे, खुश रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वस्तु और सेवाकर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार अगले महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डीप फेक से निपटने के लिए नियमों पर परामर्श पत्र जारी करेगी। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की। कनाडा की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। और पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वस्तु और सेवाकर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
1: The council recommended removing arrest powers under GST.
2: GST परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
1: From 25,000 to 10,000.
0: कर फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है।
1: जीएसटी काउंसिल टुडे हैज रेकमेंडेड।
2: जीएसटी परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है। 10,000 रुपए की निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है।
1: पेंडिंग नोटिसेस बिलो द सेड थ्रेशोल्ड।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशो भूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
3: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व

0: तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
1: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया।
0: डीप फेक कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है ये भी हम देख रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पर काम करें। सरकारें, टेक्नोलॉजी कंपनी, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सभी को इस फ्रेमवर्क से जुड़ना होगा। मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, आइए एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाएं जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की।
2: 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य का भारत कनेक्टेड रहे, भविष्य के भारत में डिजाइन रहे और भविष्य का भारत नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस एक दशक में जो संपूर्ण भारत की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रेटर्निटी ने करके दिखाया है वो शायद कई और देशों को सदियों लग जाती जो 10 वर्ष की अवधि में भारत ने करके दिखाया है।
1: श्री सिंधिया ने किफायती और सार्थक डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए निवेश और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सहायक नीतिगत ढांचे के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी को बिना किसी सीमा के हासिल करना चाहिए। स्केल विदाउट बाउंड्रीज विषय के अंतर्गत इस कार्यक्रम में पॉलिसी, रेगुलेशन, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें AI के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग से समाज को अधिक लाभ मिलेगा।
3: वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक एक्सटेंसिव स्टडी की गई है किस तरह से समाज के उन वर्गों को AI का बेनिफिट मिले जो नॉर्मली टेक्नोलॉजी से वंचित रहते थे। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का एक मार्गदर्शन दिया है, उसी भावना के साथ कई ऐसे एग्जाम्पल जैसे किसानों के लिए एक एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा हुआ है AI का, जिसमें 40% के आसपास यील्ड बढ़ी है और पानी का उपयोग कम हुआ और साथ ही साथ फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट भी कम हुआ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका तथा वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: पत्र में चिंता व्यक्त की गई है कि भारत के संवैधानिक निकायों पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये निहित राजनीतिक स्वार्थों द्वारा चलाया जा रहा अभियान है। पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के अंतर्गत वैध है। उन्होंने बताया कि पिछला SIR लगभग 2 दशक पहले पूरा हुआ था और किसी ने भी उन संशोधनों को साजिश नहीं कहा था। हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि

0: उच्च न्यायालय ने SIR को वैध और चुनाव आयोग की शक्तियों के दायरे में माना है। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि वे दावों की जांच पड़ताल और पुष्टि किए बिना अटकलों और अनुमानों को बढ़ावा न दें। पत्र में संवैधानिक निकायों से दृढ़ रहने, पारदर्शिता बनाए रखने और राजनीतिक खींचतान से दूर रहने का आग्रह किया गया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवैधानिक पद पर 25 साल का लगातार कार्यभार लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक रिकॉर्ड है। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में 2 दिवसीय नमो बुक फेस्ट को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 12-13 वर्ष में दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी के बहुआयामी व्यक्तित्व में काफी दिलचस्पी देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जारी रहने वाली अथक वचनबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन के इस दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि दृष्टिकोण नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी पहलों के जरिए किस तरह कार्यान्वित हुआ।
2: वर्ष 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। यह देश में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन के हर स्तर पर समान अवसर और प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की थी कि वे वर्षों से लंबित महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए मिलकर काम करें।
3: आज पंचायतों में, नगरपालिका में, महानगरपालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता, आग्रह करता, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार से राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि इस कानून के जरिए मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने का रास्ता खोल दिया है।
4: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित कर मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भागीदारी देने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह केवल आरक्षण नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व एवं उनके सामर्थ्य पर विश्वास किया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
2: नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। यह भारत की नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें देश के भविष्य को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। 2 दिन का विभागीय शिखर सम्मेलन आज शुरू हुआ। ये सम्मेलन सभी राज्यों के महिला और बाल विकास क्षेत्र के साथ राजनीतिक नेतृत्व और आधिकारिक संबंध की भागीदारी का साक्षी है। कनाडा की लेखिका एन कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें यह सम्मान साहसिक और कल्पनाशील लेखन के लिए मिला है। स्वीडिश एकेडमी ने स्टॉकहोम में पुरस्कार की घोषणा की। पुरस्कार राशि 1,02,00,000 स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 11.5 करोड़ रुपए है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
5: सेंसेक्स 1045 अंक गिरकर 71,593 पर बंद हुआ। निफ्टी 371 अंक लुढ़ककर 22,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ ₹96.79 पर बंद हुआ।
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीम का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
6: मोदी जी ने इस बात की चिंता की है कि हर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे और साथ में खुराक की व्यवस्था दी जाएगी और मुफ्त

0: दवाई दी जाएगी इसकी व्यवस्था की। अब हमारा काम यह है कि हम केस को डिटेक्ट करें और उनको दवाई तक पहुंचाएं और उनको दवा भी दिलाएं, खुराक भी दिलाएं, इस बात के लिए हम काम में जुटे। आज हमारे 55 जिलों में लगभग सभी ब्लॉक्स में 11 स्टेट्स में जोश की टीम को यह टास्क दिया गया है।
1: भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और तरुण मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने भारतीय पैरा तैराक और खेल जगत की जानी मानी हस्ती पद्मश्री से सम्मानित सत्येंद्र सिंह लोहिया से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मुरुगन ने कहा कि सत्येंद्र सिंह का साहस, दृढ़ता और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन का प्रेरणादायक सफर देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करता रहता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार अगले महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डीप फेक से निपटने के लिए नियमों पर परामर्श पत्र जारी करेगी। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की और कनाडा की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. GST Council scraps arrest power of tax officers, raises prosecution threshold to 5 crore from 1 crore rupees, no changes made to GST rates. Prime Minister Narendra Modi says, growing use of digital technology makes stronger phone and network security essential, calls for global framework to tackle deepfakes and cyber frauds. Government to release consultation paper on artificial intelligence regulations within next month to ensure AI safety and tackle deepfakes, announces Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav. 42 former judges write open letter expressing concern over attempts to undermine Election Commission, judiciary and other constitutional institutions. Canadian poet Anne Carson wins Nobel Prize in Literature for bold and innovative work blending classical tradition with contemporary forms. And in badminton, PV Sindhu sails into women's singles quarterfinal of Arctic Open at Vantaa in Finland. The GST Council, during its 57th meeting in New Delhi today, approved a series of measures to ease compliance for taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and raising the threshold for prosecution from 5 crore rupees to 1 crore rupees. Finance Minister Nirmala Sitharaman made the announcement while addressing the media in the national capital this evening.
3: The council recommended removing arrest powers under GST. Council recommended raising the prosecution threshold from 1 crore to 5 crores and reducing the general penalty from 25,000 to rupees 10,000.
2: The punishment, whether a fine, imprisonment or both, will be left to judicial discretion in each case. A taxpayer who files a return late, makes a mistake or falls behind on payment will face recovery proceedings, interest and a proportionate penalty. The finance minister said no changes has been made to GST rates at the meeting and that the rate structure is settled. She said the GST Council has recommended common standards for notices and proceedings.
3: GST Council today has recommended common standards for notices and proceedings and no notices below the prescribed monetary threshold of 10,000 rupees, including withdrawal of pending notices below the said threshold. We will not be issuing any notices for monetary threshold of 10,000 or below.
2: Ms. Sitharaman said the council

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
1: The council recommended removing arrest powers under GST.
2: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
1: From 25,000 to ₹10,000.
0: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्रवाई के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
3: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
0: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका और वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में भारतीय सेना की 94वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने वायु सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी वायुसेना दिवस पर देश के सभी बहादुर वायु योद्धाओं को सलाम किया। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको कुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और थरुण मान्यपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ऐसे खूबसूरत एहसास व जज्बात सिर्फ और सिर्फ महबूब के लिए कही हुई गज़ल में ही उमड़ सकते हैं। लेकिन गज़ल की जब बात है तो ये कहना भी गलत ना होगा दोस्तों कि गज़ल की खूबसूरती ये है कि शायर महबूब के हुस्न को सिर्फ बाहरी खूबसूरती तक महदूद नहीं रखता। कई बार महबूब की सादगी, उसकी वफा, शर्मो हया बात करने का अंदाज और दिल की नरमी को भी उसके हुस्न का हिस्सा ही मानता है। और यही वजह है कि गालिब हो, मीर हो, सौदा हो या फिराक, हर किसी ने जब मोहब्बत का जिक्र किया है तो उसमें इन सब एहसास व जज्बात को भी डालने की उनकी कोशिशें हमेशा कामयाब हुई हैं। गज़ल में महबूब का हुस्न सिर्फ आंखों से दिखाई देने वाला नहीं होता दोस्तों, बल्कि दिल से महसूस किया जाने वाला ये एहसास होता है। कहते हैं, इतनी हसीन इतनी जवान रात क्या करें, इतनी हसीन इतनी जवान रात क्या करें, जागे हैं कुछ अजीब से जज्बात क्या करें, पेड़ों के बाजुओं में महकती है चांदनी, बेचैन हो रहे हैं ख्यालात क्या करें, सांसों में घुल रही है किसी सांस की महक, दामन को छू रहा है कोई हाथ क्या करें,

विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

11:26 18 सेकेंड। खूबसूरत से प्रोग्राम चल रहा है जिसमें लफ्ज़ मौसिकी का आबशार रवा दवा है। हिना मौज के साथ हैं आप इस प्रोग्राम में और ये प्रोग्राम है रंगे महफिल जो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर। दोस्तों बात चल रही है गज़ल में महबूब की गुफ्तगू की, महबूब के ज़िक्र की। शायद यही वजह है दोस्तों कि महबूब को हम सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं अंदरूनी तौर पर भी गज़लों में लफ्ज़ों के मानी जब आते हैं तो हमें एहसास होता है कि महबूब का ज़िक्र सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं बल्कि अंदरूनी तौर पर भी किया जा रहा है। उससे मुतालिक हर वो चीज़ लफ्ज़ों में पिरोई जाती है जो हम उसके बारे में सोचते हैं। यही वजह है कि सदियों से बरसों से शायर अपने महबूब की खूबसूरती को कभी चांद से, कभी फूलों से, कभी बहार से, तो कभी सितारों से तशबीह देता आया है। मगर हर बार उन्हें लगता है कि दुनिया की तमाम खूबसूरत चीज़ें भी उनके महबूब के हुस्न के सामने अधूरी हैं। ये पढ़ने के बाद महसूस होता है किसी भी गज़ल को, इस तरीके की कोई भी गज़ल हो जिसमें पूरा जिक्र महबूब का हो, उस वक्त आपको एहसास होता है कि ये किस तरफ बात हो रही है, किस तरह से एक शायर सारे लफ्ज़ों को समेटने के बावजूद भी ये एहसास दिलाता है कि शायद अभी भी कुछ कमी रह गई, कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो कहना चाहता है लेकिन नहीं कह पा रहा है। मतलब वो जो फील करता है या वो जो सोचता है अपने महबूब के बारे में, वो अब भी कागज़ पर पूरी तरह लफ्ज़ों का जामा पहनाकर नहीं उतार पाया है। और गज़ल में महबूब का जब हुस्न सिर्फ बयान किया जाता है दोस्तों, तो मोहब्बत करने वाले दिल की नज़र से महसूस किया जाता है। इसीलिए तो गज़ल का महबूब कभी सामने होकर भी दूर रहता है और कभी दूर होकर भी शायर के लिए दिल के बेहद करीब होता है। ऐसे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिसको एक शायर कहने की कोशिश करता है, वो है ना एक शेर बशीर बद्र साहब का, उतर भी आओ कभी आसमां के जीने से, तुम्हें खुदा ने हमारे लिए बनाया है। वो चांदनी सा बदन खुशबुओं का साया है, बहुत अजीज हमें है मगर पराया है। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जब दूरी होती है तो आपको एहसास दिलाया जाता है करीब होने का, क्योंकि लफ्ज़ इस तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे करीब होने का एहसास होता है। और कभी कभी नाराज़गी में पास होने के बावजूद भी आप दूरी का एहसास करते हैं, वो भी कला एक शायर बहुत अच्छे से जानता है, बखूबी निभाता है उन्हें लफ्ज़ों के जामे में लपेट कर। जब शेर कहता है और एक के बाद एक शेर जब गज़ल का मौजू बनते हैं तो फिर वो गज़ल आम फहम हो जाती है, हमें हमारे जैसी लगने लग जाती है, क्योंकि वो हमारे बीच आकर खड़ी हो जाती है।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर हिना मौज के साथ हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल। 11:44:10। कहते हैं कि मुझे ये फूल न दे तुझको दिलबरी की कसम, मुझे ये फूल न दे तुझको दिलबरी की कसम, ये कुछ नहीं तेरे होंठों की ताजगी की कसम। नजर हंसी हो तो जलवे हसीन लगते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ मुझे मेरे हुस्न की ही कसम। तू एक साज है छेड़ा नहीं किसी ने जिसे, तू एक साज है छेड़ा नहीं किसी ने जिसे, तेरे बदन में छुपी नर्म रागनी की कसम। ये रागनी तेरे दिल में है मेरे तन में नहीं, परखने वाले तुझे तेरी सादगी की कसम। गजल का लोच है तू नज्म का शबाब है तू, गजल का लोच है तू नज्म का शबाब है तू, यकीन कर मुझे मेरी शायरी की कसम। ये भी एक तरीके के मामलात होते हैं जब आप एक पूरी गजल में हर शेर किसी की हुस्न के नाम कर दें, क्योंकि हमेशा ये देखा जाता है कि गजल में ज़्यादातर शायर, चाहे वो गज़ल के ही क्यों ना हो, वो किसी भी एक टॉपिक पर, एक चीज़ पर एक शेर कहा करते हैं। लेकिन अगर पूरी गज़ल एक ही शायर से मुतालिक है और उसमें पूरी बात महबूब से मुतालिक है, तो समझ लीजिए कि उसमें कहीं ना कहीं हर शेर में एक वो चीज़, एक वो जुज़ मौजूद है जो महबूब तक जाता है। और हर गज़ल का शेर अगर अलग अलग बात बयान करता है तो उसे हम गज़ल के उन शेरों में शामिल करते हैं जिनमें आप हर तरीके की बात कहने में खुला महसूस करते हैं। अगर एक ही मौजू पर बात चलती है तो वो नज़्म में भी की जा सकती है और गज़ल में भी, लेकिन अगर अलग अलग शेरों में अलग अलग बात करनी है तो वो गज़ल का मौजू ही बन सकते हैं। बहरहाल शायरी में बहुत कुछ इतना वसी है कि उसको बयान करना एक छोटे से वक्त में बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश हमारी ये रहती है कि आसान फहम लफ्ज़ों में हम आप तक हर वो बात पहुंचा सकें जो शायरी से मुतालिक है। रंगे महफिल प्रोग्राम में बने रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो पर हिना मौज के साथ।

11:54 है, आप सब लोगों को खुदा हाफिज कहने का वक्त आ चला, इस उम्मीद के साथ कि हम फिर मिलेंगे। एक शेर पढ़ना चाहूँगी कि सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे ख्याते जाते। बिल्कुल हमारे मरासिम इतने हैं कि हम एक दूसरे के साथ यूं ही मिलते रहेंगे। इन खूबसूरत प्रोग्राम्स के साथ आप सुनेंगे, मैं सुनाऊंगी और इंशाल्लाह हमारी मुलाकात फिर ज़रूर होगी। इस उम्मीद और ख्वाहिश के साथ हिना मौज आप सबसे रुख्सत तलब करती है इस खूबसूरत सी आखिरी नगमों वाली गज़ल के साथ। एक तरीक़े का नगमा भी है और इसके लफ्ज़ आप सुनिए तो आपको महसूस होगा कि इसमें गज़ल का जुज़ भी मौजूद है। चलिए इजाज़त लेती हूँ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, शुभ बख़ैर।

रात्रि के 12 बजे हैं, समय है मुख्य समाचारों का। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों के गिरफ्तार करने के अधिकार को समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल एक्ट 2026 कल लागू हो गया है। गृह मंत्रालय

ने अधिसूचना जारी कर 8 अक्टूबर को इस कानून के प्रावधानों के लागू होने की तारीख तय की थी। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल नई दिल्ली में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय भारत विक 6G गोष्ठी का उद्घाटन किया। 2 दिन की इस संगोष्ठी में दुनिया भर से नीति निर्माता, वैश्विक प्रौद्योगिकी समूह, दूरसंचार ऑपरेटर, बड़े व्यवसायी, शिक्षा जगत, अनुसंधान संस्थान और अन्य हितधारक शामिल हुए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने सभी संस्थानों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। भारत और लाइबेरिया ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग एंड सेफेयर्स S4 के सह अध्यक्ष के तौर पर जहाज़ों और नाविकों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। रियाद में भारतीय दूतावास ने सऊदी अरब में रहने वाले भारतीय नागरिकों को वर्तमान स्थिति को देखते हुए अलर्ट रहने को कहा है। कनाडा की कवयित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा और PV सिंधु आर्कटिक ओपन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: 12:03 हुए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम जीरो आवर शो। मैं हूं एसएम शरीफ, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, माँ का खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

रात्रि का एक बजा है। प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों के गिरफ्तार करने के अधिकार को समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल एक्ट 2026 कल लागू हो गया है। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर 8 अक्टूबर को इस कानून के प्रावधानों के लागू होने की तारीख तय की थी। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल नई दिल्ली में 3रे अंतर्राष्ट्रीय भारत 6G गोष्ठी का उद्घाटन किया। 2 दिन की इस संगोष्ठी में दुनिया भर से नीति निर्माता, वैश्विक प्रौद्योगिकी समूह, दूरसंचार ऑपरेटर, बड़े व्यवसायी, शिक्षा जगत, अनुसंधान संस्थान और अन्य हितधारक शामिल हुए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने सभी संस्थानों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। भारत और लाइबेरिया ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग एंड सीफेयर्स S4 के सहअध्यक्ष के तौर पर जहाजों और नाविकों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। रियाद में

भारतीय दूतावास ने सऊदी अरब में रहने वाले भारतीय नागरिकों को वर्तमान स्थिति को देखते हुए अलर्ट रहने को कहा है। कनाडा की कवित्री एनी कॉर्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा और पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

आकाशवाणी रात्रि का 1:03 हुए हैं। शुरू करते हैं बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है सुहानी रात।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

इसीलिए तो कहता हूं, यही तो था एक हीरो जिसके आगे मैं जीरो। बाकी

रात्रि के 2 बजे हैं। प्रस्तुत हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों के गिरफ्तार करने के अधिकार को समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। श्री मोदी ने डीपफेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन एक्ट 2026 कल लागू हो गया है। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर 8 अक्टूबर को इस कानून के प्रावधानों के लागू होने की तारीख तय की थी। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल नई दिल्ली में 3रे अंतर्राष्ट्रीय भारत 6G गोष्ठी का उद्घाटन किया। 2 दिन की संगोष्ठी में दुनिया भर से नीति निर्माता, वैश्विक प्रौद्योगिकी समूह, दूरसंचार ऑपरेटर, बड़े व्यवसायी, शिक्षा जगत, अनुसंधान संस्थान और अन्य हितधारक शामिल हुए। सरकार ने कैंसर रोधी दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर मुनाफे की सीमा तय की। यह सीमा अधिकतम खुदरा मूल्य के 30% तक रहेगी। उम्मीद है कि इस कदम से दवाओं की कीमतों में 70% तक कमी आएगी। हुती समूह ने सऊदी अरब पर नए मिसाइली हमलों का दावा किया। इन हमलों में रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, नरजान हवाई अड्डे और खमीस मुशेत के हवाई ठिकाने को निशाना बनाया गया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट दिसंबर 2026 सत्र के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। आवेदन इस महीने की 28 तारीख तक किया जा सकता है। इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर JRF या PhD के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कनाडा की कवियत्री एनी कार्सन

को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा, और पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

2:03 हुए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम भुलाए ना बने।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: ఏక పేరు ఆయన, యా గోళా బోల్లా, యా చతుర బోల్లా, గా
1: ఎక్క చతుర నా.

में हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा जा।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम 102.6 रेनबो और आइए अब सुनते हैं मुख्य समाचार। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों के गिरफ्तार करने के अधिकार को समाप्त कर दिया किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। श्री मोदी ने डीपीएफ के और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल एक्ट 2026 कल लागू हो गया है। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर 8 अक्टूबर को इस कानून के प्रावधानों को लागू होने की तारीख तय की थी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची के गढ़खंडागा में ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में कई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। सरकार ने कैंसर रोधी दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर मुनाफे की सीमा तय की। यह सीमा अधिकतम खुदरा मूल्य के 30% तक रहेगी। उम्मीद है कि इस कदम से दवाओं की कीमतों में 70% तक कमी आएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट दिसंबर 2026 के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। आवेदन इस महीने की 28 तारीख तक किया जा सकता है। इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट UGCNET.NTA.NIC.IN पर जाकर JRF या PhD के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सूखे से प्रभावित 265 तालुकाओं में अनाज की मांग करने वाले हर व्यक्ति को मुफ्त अनाज देने का आदेश दिया है। यह फायदा उन लोगों को भी मिलेगा जो अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में नहीं आते। कनाडा की कवयित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा और पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। ये थे आज के मुख्य समाचार।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मिडनाइट मेलोडीज आकाशवाणी रेनबो सिंगल पर 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी रेनबो का एफएम है। आइए अब सुनते हैं मुख्य समाचार। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों के गिरफ्तार करने के अधिकार को समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस बल एक्ट 2026 लागू हो गया है। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर 8 अक्टूबर को इस कानून के प्रावधानों के लागू होने की तारीख तय की थी। सरकार ने कैंसर रोधी दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर मुनाफे की सीमा तय की। यह सीमा अधिकतम खुदरा मूल्य के 30% तक रहेगी। उम्मीद है कि इस कदम से दवाओं की कीमतों में 70% तक कमी आएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश के पश्चिमी क्षेत्र में प्रमुख कल्याणकारी सामाजिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन की व्यापक समीक्षा करने के लिए आज द्वीप में क्षेत्रीय समीक्षा बैठक आयोजित करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सूखे से प्रभावित 265 तालुकाओं में अनाज की मांग करने वाले हर व्यक्ति को मुफ्त अनाज देने का आदेश दिया है। यह फायदा उन लोगों को भी मिलेगा जो अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट दिसंबर 2026 सत्र के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। आवेदन इस महीने की 28 तारीख तक किया जा सकता है। इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट UGCNET.NTA.NIC.IN पर जाकर JRF या PhD के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कनाडा की कवयित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है और PV सिंधु आर्कटिक ओपन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। ये थे अभी के मुख्य समाचार। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी रेनबो जिंगल पर सारे गामा।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रेनबो जिंगल पर सारे गामा। एक 102.6